ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सायकालीन सभा आरंभ होती है। सभा में आप हमारे साथ बने रह सकते हैं रात्रि 11:10 तक। सभा का आगाज करते हैं युवा दिलों की धड़कन कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, हाय, गुड इवनिंग जोधपुर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बारिश के मौसम में तो और मज़ेदार होंगे। तो फ्राइडे की इस इवनिंग में आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युव वाणी पे। बाहर ना बारिश की बूंदें लगातार बरस रही है, कहीं मीठी भीनी सी खुशबू है, कहीं चाय की प्याली और जो गर्मा गर्म चाय इस बारिश में पकौड़ों के साथ, आए हाय क्या ही मज़ा है। तो चलिए फिर चाय और पकौड़ों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जहाँ हम दोनों हैं, यानी कि मैं स्वस्थ हूँ और आज मेरे साथ है।
1: दोस्तों, मैं हूँ अदिति मौर्या। आज का, जैसे कि आप सबको पता है, शुक्रवार का दिन है, वीकेंड है, लेकिन इस वीकेंड को हम जो है यूजफुल बनाने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि हम इस वीकेंड

पे इस फ्राइडे को हम आपके लिए अवेयरनेस फैलाने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन है इनकम टैक्स डे का। इससे जुड़ी जो है अवेयरनेस, वो आपके लिए जरूर लेकर आएंगे हम, लेकिन ये सॉन्ग पहले सुनिए।

0: दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज के बारे में जो सुनने में थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन हमारे पॉकेट और फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी है, इनकम टैक्स और ITR फाइलिंग। आइए सुनते हैं दीपक कुमार केवलिया, कंपनी सेक्रेटरी टैक्स एक्सपर्ट से अदिति मौर्या की बातचीत।
1: आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी पहली जॉब स्टार्ट की है या फ्रीलांसिंग से अर्निंग शुरू की है? जब टैक्स की बात आती है तो माइंड में बस कंफ्यूजन चलता है, न्यू रेजीम चूज करें या ओल्ड, फॉर्म 16 क्या है, पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें। आज इनकम टैक्स डे के स्पेशल मौके पर इन सभी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट कंपनी सेक्रेटरी दीपक केवलिया जी। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में।
2: थैंक यू सो मच मैम।
1: सर, सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, रीसेंट अपडेट्स के हिसाब से टैक्सेशन रिजीम में क्या मेजर चेंजेस आए हैं और टैक्स रिजीम को लेकर आम लोगों में जो कन्फ्यूजन आई, खास करके यूथ में, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे?
2: सबसे पहले थैंक यू, क्वेश्चन बहुत सुनहरा है और आज इनकम टैक्स डे भी है। आपने बात शुरू करी कि वो लोग जो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं या स्टूडेंट हैं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने अपना पैन कार्ड बनवा लिया है तो डेफिनेटली उसके बाद आपको हमेशा हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही चाहिए, चाहे आपकी इनकम जीरो हो। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जो आप अपनी इनकम उसमें डिस्क्लोज कर रहे हो, जो भी आपकी इनकम है, उससे आपकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है, फ्यूचर में हर जगह पे क्रेडिबिलिटी मान लो, या आप लोन भी लेना चाहते हैं तो भी मान लीजिए, आपसे 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न बैंकिंग सेक्टर में नेसेसरी होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर साल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं है, ये एक डिस्क्लोजर है कि आप इनकम कमा रहे हैं।
1: तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि जो फर्स्ट टाइमर्स है, क्योंकि हमारे लिसनर्स काफी यूथ होंगे, तो उनको ITR फाइलिंग का क्या प्रोसेस है, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, जब तक आपकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती है, से फॉर एग्जांपल आप 10,000 15,000 20,000 वाली इनकम कमा रहे हैं, तो ऐसे में आप खुद भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। AI का जमाना है, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपना पैन रजिस्टर करके, जिसमें आपको पैन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड अपने साथ में होना चाहिए, आप वो दोनों अपने पास में रख के और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उस वक्त आपको ईमेल आईडी और फोन पे OTPs आते हैं, जिससे आपको ऑथेंटिकेशन होता है और आप अपने आप को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की incometax.gov.in की वेबसाइट पे रजिस्टर करवा देते हैं। अब आप अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू करेंगे, वहां पे जो डिटेल्स है वो आपको लगभग समझ में आ जाती है और अपने आप ही खुद ही भर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि क्योंकि इनकम टैक्स जैसा मामला है, कहीं हम अपनी इनकम डिस्क्लोज करते टाइम कोई एरर ना कर लें, इसलिए बेटर रहता है कि किसी कंसल्टेंट से आपको ITR भरवाना चाहिए। लेकिन भरना सबको चाहिए, डिपेंड्स, आप को लगता है कि आप 500 से 1500 रुपए, अगर लगभग इतने ही 500 से 1500 रुपए में कई सारे कंसल्टेंट आपका ITR भर देते हैं, तो भरवा सकते हैं।
1: ओके, तो आप कह रहे हैं कि कंसल्टेंसी है तो वो बेटर रहेगा, आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है इसमें।
2: बिल्कुल, अगर हाँ, अगर आप तो किसी आप लर्नर से भी भरवा सकते हैं, जैसे जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पे जो लोग आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं, उनमें से अगर आपका कोई नोन हो, क्योंकि बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, लेकिन कहीं टेक्निकल कोई एरर ना हो जाए।

0: कहीं इनकम डिस्क्लोजर में हम कोई गलत हेड में अपनी इनकम ना शो कर लें, इसलिए बेटर रहता है कि उनकी हेल्प से या तो स्वतः भरें या उनकी हेल्प से इनकम टैक्स रिटर्न भरवा दें। ये बात उन लोगों के लिए जो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी इनकम एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो गई है तो बेटर रहता है कि कंसल्टेंट से भरवा लें।
1: अच्छा सर, मान लीजिए मेरी सैलरी 12 लाख है, तो क्या मुझे ITR भरना चाहिए या नहीं?
0: देखो, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है और अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। पिछले साल बजट में 12 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स फ्री किया है, लेकिन वो टैक्स फ्री किया है विद रिबेट। मींस टू से, अगर आप दो तरह के रेजिम है, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हो, जो लगभग आजकल सभी लोग ऑप्ट कर रहे हैं और इसे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम भी कहा है, अगर आप वो ऑप्ट कर रहे हैं तो आप को 60,000 रुपए तक की रिबेट मिल जाती है और 60,000 का ही टैक्स बनता है। तो सेक्शन 87A है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, तो वो कहता है कि 60,000 की रिबेट लेके और अब आपका टैक्स हो गया जीरो। पर क्योंकि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको कंपल्सरीली इनकम टैक्स भरना ही है। दैट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। जो 2,50,000 है वो इनकम टैक्स एक्ट में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कही गई है, उसके बाद में आपको रिटर्न भरना ही पड़ेगा। लेकिन यहां से लेकर 12 लाख तक आपका टैक्स नहीं बन रहा है, मींस टू से आपको गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट जमा नहीं करवाना है, बट ITR भरना कंपलसरी है।
1: हर साल जुलाई का महीना है आते ही ई फाइलिंग पोर्टल पर ट्रैफिक सर्ज हो जाता है। सो जुलाई 31st की डेडलाइन आम सैलरीड प्रोफेशनल्स और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए इतनी क्रूशियल क्यों है?
0: देखिए, क्योंकि पिछले सालों में ऐसा होता था कि 31st जुलाई तक आते आते ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता था, लेकिन थैंक यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लास्ट 4 to 5 years से इवन 31st जुलाई पर भी लोग भरते हैं। तो जो रिटर्न हम लोग 10-15 मिनट में भर सकते हैं वो 15 मिनट 20 मिनट में भरा जाता है, बट हो जाता है। वेबसाइट क्रैश बहुत कम हो रही है ट्रैफिक की वजह से, बट स्टिल स्पीड तो कम हो जाती है। तो बेटर यही रहता है कि डेडलाइन का वेट ना करें और पहले ही अपना ITR भर देवें। पहले क्या होता था, दो ही डेट थी, 31st जुलाई और अक्टूबर की डेट। अब 3 डेट कर दिए, 31st जुलाई भी है, 31st अगस्त भी है, 31st अक्टूबर भी है, और नॉन रेजिडेंट जो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं 92E में, जो अपनी रिपोर्ट जमा करवाते हैं, उनके लिए 30th नवंबर भी है। बट क्योंकि युवावाणी कार्यक्रम है और हमारे जो ज्यादातर श्रोता आप लोग बता रहे हैं जिस तरह से वो युवा होते हैं, उन लोगों के लिए मेजरली जो टाइमिंग है वो 31st जुलाई है। विदाउट वेस्टिंग टाइम ITR हमें टाइम पे भर देना चाहिए।
1: जी सर, तो जुलाई के आखिरी दिनों में ना हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि पोर्टल स्लो हो रहा है या सर्वर डाउनलोड एरर आ रहा है। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए लास्ट मिनट फाइलर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको?
0: देखिए, एक मिथ है ना, मैं आपको बताता हूँ, 31st जुलाई से पहले ITR भरना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2,50,000 के अंदर है, मींस टू से आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ है, तो आपकी 2,40,000 इनकम होगी। यहां पे एक और बात है, सैलरी वालों के लिए 50,000 और 75,000 के दो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, यानी कि ऑटोमेटिकली अगर आप न्यू रेजिम में हैं तो 75,000 आपके माइनस हो जाएंगे, उसके बाद आपकी सैलरी दिखेगी। तो ऐसे में अगर वो इनकम अगर आपकी 2,50,000 के अंदर है तो आप 31st दिसंबर तक भी भरते हैं तो भी कोई पेनल्टी नहीं है।
1: ओ, अच्छा, ऐसा होता है।
0: मींस टू से आपकी इनकम 2,80,000 है, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लो, तो आपकी सैलरी बची 2,10,000। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी पेनल्टी नहीं भरनी है, जीरो पेनल्टी में आप रिटर्न भर सकते हो। तो डोंट पैनिक अगर आपकी सैलरी 2,50,000 से कम है, बट पैनिक क्योंकि आप कम कमा रहे हो।
1: तो सर, अगर कोई लिसनर्स किसी रीजन से जुलाई 31st की डेडलाइन मिस कर दे तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके लिए, या उसके पास क्या ऑप्शन बचता है?
0: ना, ऐसी कंडीशन में अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम है, जीरो पेनल्टी, जीरो लेट फीस। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फीस, क्योंकि अगर कोई इनकम टैक्स एक्ट का जानकारी सुन रहा होगा तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म है, इंटरेस्ट, फीस एंड पेनल्टी, तो इसको हम लोग लेट फीस बोलते हैं। तो 2,50,000 से अगर आपकी ज्यादा इनकम है और 5 लाख तक है तो आप 1,000 रुपए के फाइन के साथ में रिटर्न भर सकते हो, यानी कि लेट फीस जो है वो कितनी है, 1,000 रुपए। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा इनकम है तो जैसे जैसे टैक्स बनता जाता है तो वो वहां पे जो मैं फीस वर्ड यूज कर रहा हूँ उसके साथ टैक्स का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो वैसे 1,000 रुपए है पेनल्टी, लेट फीस 1,000 रुपए है, 2,50,000 से कम है तो 0 रुपए है।
1: तो पेनल्टी से बचने के लिए जुलाई एंड से पहले हमको भरना है, फाइल करना है।
0: आपको, अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे एक ना पेच है जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या है कि जैसे आपको लग रहा है कि आप भर रहे हो लेकिन आप इन्फॉर्मेशन सही अपलोड नहीं हो पा रही है, आप भर दो,

0: 31 जुलाई से पहले रिटर्न भर दो और आपको लगता है गड़बड़ हो चुकी है या हमने कोई गलत डेटा भर दिया है, तो हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा। रिवाइज की कोई पेनल्टी नहीं है।
1: ओके।
0: आपने 28 जुलाई को या 29 जुलाई को या 30 जुलाई को आपने स्टार्ट किया, लेकिन किसी रीजन से जो डेटा फिल कर रहे हो उसमें एरर आ रही है, बट सबमिट बाद में भी सबमिट हो रहा है, आप एक बार सबमिट करके छोड़ दिया, वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई करने के बाद में आप क्या करेंगे, अपन उसको रिवाइज कर देंगे। तो रिवाइज रिटर्न की कोई पेनल्टी नहीं है।
1: ये काफी आपने एक एडवांटेज पॉइंट बता दिया है सारे लिसनर्स को। और
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: मैं अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी आपसे कि अक्सर लोग ITR फाइल करते वक्त अपनी सैलरी सिर्फ वही शो करते हैं और सैलरी के साथ उनके दूसरे इनकम जो होते हैं सोर्सेज वो शो नहीं करते, तो इस पे आपका क्या कहना है?
0: देखिए, करना चाहिए। अभी 12 लाख रुपए एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है जो कई लोगों का नहीं होता है, तो बेटर ये रहता है कि आप अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज करो ताकि आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, आपकी असेट क्रिएट होगी। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न आपकी हिस्ट्री बनती जाएगी और 2-3 साल 4 साल जब आप भर लोगे तो गवर्नमेंट में, बैंक में, सबकी नजर में होगा कि आपके पास इतनी असेट हो गई, तो आपको लोन कभी लेना चाहो तो, आजकल क्रेडिट का जमाना है, लोग लोन लेना चाहते ही हैं। जब आप होम लोन लेने जाते हो तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपके ITR के बेसिस पर होगी। आपने वहां पे सैलरी तो शो कर दिया, रेंट जो आपका कैश में आ रहा था वो शो नहीं किया। चाहे रेंट कैश में आ रहा है, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाओ। अगर आप दिखाओगे और 12 लाख तक पहुंच गए तो आपको टैक्स तो फिर भी नहीं देना है। ऐसी कंडीशन में आपकी एसेट जनरेट होगी। पहले जो लिमिट आपकी 6 लाख की सैलरी है, सपोज 50,000 रुपए पर मंथ जो कमाते हैं तो साल की सैलरी 6 लाख होती है, तो पहले आपकी 6 लाख की सैलरी पे लोन की लिमिट बन रही थी, अब आपकी वही लिमिट 8 लाख 9 लाख के बेसिस पर बनेगी। तो जहां आप एलिजिबल थे 30-35 लाख की लोन के बैंक की नजर में, वहां 50 लाख की लिमिट में 50 लाख तक की आपकी जो है वो बैंक लोन की लिमिट बन जाएगी, जो हमें पता ही नहीं चलता है। कई सारे क्लाइंट हमारे को बोलते हैं इनकम शो ज्यादा कर रहे हो, गलत तो नहीं होगी? मैं बोल रहा हूं है ना, तो उसको शो करो। अगर शो करोगे तभी तो वेल्थ क्रिएट होगी, कल को आप लोन लेने जाओगे। तो कई सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो बाद में आके थैंक यू बोलते हैं कि यार आपने इनकम अच्छे से हमारी शो करी, 2 साल का रिटर्न हो गया, तो उस बेसिस पर बैंक ने हमें लोन दे दिया और अच्छा अमाउंट का 80-90 लाख रुपए का उनको लोन मिल गया। तो शो करना चाहिए।
1: तो हमको सारी जो है हमारी इनकम अदर देन सैलरी वो शो करने से इतना बेनिफिट मिलता है।
0: शो करना ही चाहिए। कई लोग होम ट्यूशन लेते हैं घर पे, उनको लगता है इसमें तो क्या ही बताना। बताओ, गवर्नमेंट को बताओ कि हम इतना कमा रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे 12 लाख तक वैसे भी टैक्स नहीं ले रही है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, डरना उनको है जो करोड़ों की काली कमाई करते हैं, लेकिन जो 1-2 लाख रुपए कमाने वाले हैं सालाना, 10-12 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले, उनको तो बताना ही चाहिए, डिस्क्लोज करना ही चाहिए।
1: तो इस अदर देन जो सोर्सेज है ऑफ इनकम, उसमें सेविंग अकाउंट और ये सब शामिल हो जाता है।
0: इसमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो तो अपने आप ही इनकम टैक्स पोर्टल फेच कर लेता है। देखो, हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड कनेक्टेड है, आधार कार्ड हमने बैंक में दे रखा है, पैन कार्ड भी हमने बैंक में दे रखा है, FD का इंटरेस्ट आ रहा है, म्यूचुअल फंड की इनकम आ रही है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, या इस तरह से बैंक में कोई एक साथ पैसा जमा हुआ है, ये सब चीजें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के AIS और TIS पोर्टल पे अपने आप इशू हो जाता है। वो हम नहीं करें तो गड़बड़ हो, तो करना ही चाहिए। मैं तो इसके अलावा वो भी बता रहा हूं कि आपने कोई ट्यूशन इनकम कमाई है, होम ट्यूशन, शाम को घर पे 5-7, 20-25 बच्चों को लेकर अगर आपने होम ट्यूशन इनकम कमाई तो वो भी शो करना चाहिए।
1: जी, ITR कैसे फाइल करें और लेट फाइल करने से क्या होता है, ये सब हमने जान लिया। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सभी लिसनर्स के दिमाग में चल रहा है, अपना हार्ड अर्न टैक्स कैसे बचाएं। एक ऑर्डिनरी टैक्स पेयर के लिए लीगल तरीके से टैक्स मैक्सिमाइज सेव करने का बेस्ट फॉर्मूला क्या है?
0: देखिए, ये सवाल तब ज्यादा जायज होता जब हम अभी 2025 से पहले होते, क्योंकि हम 2026 में हैं और 2025 में जो अगस्त में जो बजट आया था उसमें 12 लाख तक की इनकम यूं भी टैक्स फ्री है। यानी कि आप देखो, जो खाई है टैक्स ना भरने वालों की और टैक्स भरने वालों की इतनी लंबी हो चुकी है कि अगर आप सच में 12 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो ही टैक्स भरना है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए मंथली, एक आज की तारीख में हमारे जो खर्चे हैं वो 30-35 हजार रुपए महीने के हैं, 40 हजार रुपए महीने के हैं जब हम जोधपुर में हैं। तो जब आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो यानी कि आपकी इनकम सफिशियंट है, तो उससे ज्यादा आपको टैक्स भरना ही चाहिए। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब ओल्ड रेजिम हुआ करता था तब वो लोग जो LIC में पैसा जमा करवा रहे हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड के टैक्स सेवर फंड्स परचेज कर रहे हैं, या फिर जिसने कोई अपना मकान बनाया है और उस मकान के ऊपर लोन लेकर उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, इस तरह के जो खर्चे होते थे ना वो इनकम में से लेस हो जाते थे। लेकिन तब इनकम टैक्स की जो लिमिट थी वो 2,50,000 ही थी।

0: ना। और जो रिबेट की लिमिट अभी 12 लाख वाली है वो 5 लाख ही थी, पिछले साल वो 7 लाख थी। तो अब जब इन्होंने इस रिबेट को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, तो 12 लाख से ज्यादा वालों को तो सबको टैक्स देना है न्यू रेजिम में, 12 लाख से कम वालों को टैक्स देना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अब क्या करना शुरू कर दिया है कि टैक्स सेवर वाली चीजों को हटा के न्यू रेजिम में आपको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं है, आपको टैक्स भरना ही है, आपको कहीं जमा करवाने की पाबंदी भी नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि हम इसलिए LIC में पैसे जमा करवाते थे क्योंकि हमें ATC में 1,50,000 का डिडक्शन मिलता था। न्यू रेजिम में उन्होंने बोला, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, खूब कमाओ खूब खर्च करो ताकि मनी का रोटेशन चलता रहे,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो गवर्नमेंट अब ये चाह रही है, तो इस वजह से वो जो टैक्स सेवर वाली बातें हैं वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं।
1: तो सर आपके कहने से क्या है कि ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम, इसमें से कौन सा बेटर सेविंग ऑप्शन है?
0: अब न्यू टैक्स रिजीम।
1: Okay.
0: क्योंकि और अच्छा, गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट भी न्यू टैक्स रेजिम कर दिया है। इसका रीजन है ना, पहले क्या होता था कि एक पर्सन की सैलरी सपोज 10 लाख है, अपन कैलकुलेटिवली समझते हैं, तो 10 लाख में से 1,50,000 रुपीज वो सेव करता था कहां पे, LIC में या फिर म्यूचुअल फंड के टैक्स सेवर फंड में, इस तरह की जहां पे भी चीजें होती है वहां पे, ठीक है, ATC की बड़ी लंबी सी लिस्ट है। तो 10 लाख में से 1.5 लाख गए 8.5 लाख, अब उसका टैक्स किस में से बन रहा है, 8.5 लाख में से। गवर्नमेंट ने कहा कि तुम वो 1.5 लाख खर्चो मत, हम इस लिमिट को बढ़ा के 12 लाख कर देते हैं। अब गवर्नमेंट ने लिमिट ही 12 लाख कर दी, तो कोई व्यक्ति पहले जो LIC में पैसे जमा करा रहा था वो सिर्फ इसलिए करा रहा था क्योंकि उसका इंटेंशन सेविंग से ज्यादा टैक्स सेव करना था, तो अब वो टैक्स लग ही नहीं रहा है। तो यही रीजन है कि आजकल लोगों का LIC वगैरह में भी जो है वो इंटरेस्ट कम हो गया है क्योंकि अब टैक्स तो सेव हो नहीं रहा है और LIC उतना रिटर्न नहीं दे रही है क्योंकि लोगों को शॉर्ट टर्म में रिटर्न चाहिए, शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार वगैरह ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं, जनरल पब्लिक क्या कर रही है, 12 लाख से कम वाले कहीं पे भी सेव नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा यूथ में भी है ना, सैलरी 80-90 हज़ार लाख रुपए आजकल सबकी होती है, फॉरेन ट्रिप इसीलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग खर्च करेंगे तो
1: हाँ, हाँ।
0: है ना। मोबाइल फोन लेना है तो सीधा 1,50,000 का, वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि अब आप सेव करो मत करो,
1: टैक्स टैक्स होना चाहिए
0: हाँ। और 12 लाख से कम तो बिना टैक्स आप मजे करो।
1: ओके सर, सही कह रहे हैं आप। और जब भी टैक्स बचाने की बात आती है सबको बस एक ही सेक्शन याद आता है, सेक्शन ATC,
0: जिसका रिलेवेंस अब खत्म हो गया है।
1: ओके,
0: ATC का जो रिलेवेंस है वो अब प्योरली अगर देखा जाए तो इसलिए मतलब खत्म इसलिए हो गया है। अच्छा, एक एक जगह पर ATCCD वहां पर अभी भी हमें न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलता है, लेकिन वो किन लोगों के लिए, वो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ATCCD का फंड है उसमें जब वो इन्वेस्ट करते हैं तब सर्टेन अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा ATC के सारे पॉइंटर्स अब न्यू टैक्स रेजिम में हट चुके हैं।
1: अच्छा,
0: तो अब मतलब जो आपका जो क्वेश्चन है जिससे मैं आपका इंटेंशन पूरा समझ पा रहा हूं कि टैक्स सेविंग के लिए कुछ बता दो, तो हाँ। गवर्नमेंट ने 2025 में लिमिट ही 12 लाख इसीलिए करी है ताकि अब आप सेव करने, टैक्स को सेव करने के लिए आपको कोई एफर्ट्स लगाने ही ना पड़े।
1: अच्छा सर, तो ऐसा मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से इनकम टैक्स बचता है, उसका आज के कंटेक्स्ट में क्या रिलेवेंस है?
0: इसको मैं कह सकता हूं कि अब ये मिथ है।
1: ओ,
0: अब ऐसा नहीं रहा है। अब ओल्ड टैक्स रेजिम में हम कई सारी जब कैलकुलेटर पे बैठ के कैलकुलेशंस करते हैं कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, ATC में 1,50,000 किलोमीटर है, ATD मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 किलोमीटर है, फिर आगे हम आते हैं तो ATGG जहां पे रेंट पे करने पर डिडक्शन मिलता है उसकी एक लिमिट है 5,000 रुपए पर मंथ आई थिंक, ठीक है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कोई अगर हमने डोनेशन वगैरह सच में किया है तो उसकी कुछ लिमिट्स हैं, पर भाई साहब ये सब की अगर अपन टोटल कर ले तो ये मान के चलो कि 1,80,000, और अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे किया ऑन हाउस प्रॉपर्टी यानी कि मकान खरीदने पर अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है उसको भी साथ में कर लें तो 3.5 लाख रुपए ही बनते हैं, यानी कि आप सिर्फ कितनी इनकम को सेव कर सकते हो, 3.5 लाख। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में तो उन्होंने 12 लाख तक वैसे ही जो गैप है आपका ओल्ड टैक्स रिजीम का और न्यू टैक्स रिजीम का 5 लाख रुपए का, सॉरी 7 लाख रुपए का है, 5 लाख और 12 लाख में, तो यूं ही आपकी इनकम सेव हो गई है। तो फिर तो आप क्यों ही, ठीक है आप लोन लियो घर बनाओ अपना, बट नॉट बिकॉज ऑफ आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो बट नॉट बिकॉज ऑफ आप टैक्स नहीं सेव देना करना चाहते हो, हाँ. तो इसलिए वो सारी लिमिट अब खराब हो चुकी है. वो सारी

0: बातें पुरानी हो गई है आफ्टर द बजट ऑफ 2025.
1: तो सर आजकल का जो यूथ है वो सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब्स तक सीमित नहीं है, बहुत से लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, डिजिटल क्रिएशन कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो इस वाइडर कैटेगरी के लोगों के लिए फाइल करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस बात का जवाब मैं थोड़ा सा एलोबरेटिवली आपको देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लिसनर को इसका बेनिफिट होगा. लोग क्या करते हैं, कैश में रिसिप्ट ले लेते हैं. तो जैसे सपोज कि कोई एक एंकर है जो प्रोग्राम्स और शादी ब्याह में एंकर का काम कर रहा है, ऐसे पर्सन को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको वो लोग अपने क्लाइंट से वो बैंक में ही पैसा ले, ठीक है, तो उनकी ग्रॉस रिसिप्ट हो गई. या फिर कोई यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हो गए, या फिर कोई इंस्टाग्राम के वीडियो एडिटर हो गए, ब्लॉगर्स हो गए, वो जिनसे भी पैसा ले रहे ना वो सब कैसे ले, बैंक अकाउंट में. अब बैंक अकाउंट में जब वो पैसा लेंगे तो जो पैसा उन्होंने लिया है वो जनरली उनकी इनकम ही होती है क्योंकि उनका एक्सपेंसेस तो कुछ होता नहीं है,
1: वही उनका करियर.
0: और अगर वो 12 लाख तक का पैसा टोटली बैंक में ले लेते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक आईटीआर 4 है हमारे यहाँ पे, वहां पे 44AD और 44AD की इनकम हम लोग शो करते हैं. तो सपोज आपने ग्रॉस रिसिप्ट जिसको आपने पैसा जो लिया है उसका 8% भी आप चाहो तो इनकम शो कर सकते हो. सपोज आपने ले लिए खाते में 50 लाख, अकाउंट में आपके 50 लाख आ गए, अब 50 लाख का 8% 4 लाख आप इनकम शो कर दो. लेकिन गवर्नमेंट कह रही है आप ज्यादा शो करना चाहो तो भी कर सकते हो. तो क्या हुआ, 50 लाख की इनकम, सॉरी 50 लाख की ग्रॉस रिसिप्ट, आपने उसका लगभग 25% या 22% के आसपास 11 लाख आपने अपनी इनकम खुद ही शो करी. तो अब देखो दो एविडेंस हो गए, पहला एविडेंस आपके अकाउंट में 50 लाख आए हैं, दूसरा एविडेंस आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा है कि मेरी इनकम उसमें से 11 लाख है, आपको तो कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि 12 लाख तक की इनकम ऑलरेडी टैक्स फ्री है. अब आप किसी भी बैंक में जाओगे और बैंक को कहोगे मुझे लोन दो, तो जनरली बैंक क्या होती है, सैलरीड एम्प्लॉय को तो लोन देती है लेकिन इस तरह के लोगों को उनकी इनकम का प्रूफ ना होने की वजह से लोन नहीं देती है. तो अब आपके पास प्रूफ है कि देखो मेरे खाते में 50 लाख है और ये मेरा इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें मैं मेरी इनकम 11 लाख बता रहा हूं, अब आप बताओ मुझे कितने लोन दोगे, तो बैंक भी आपको लोन देगी. इसीलिए मैं कहता हूं पैसा ज्यादा से ज्यादा पैसा आप अकाउंट में लो. यहां पे और है कि जीएसटी कहता है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो वहां पे आप एक कंप्लायंस में आ जाओगे. अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर हो जिसके 20 लाख से कम की रिसिप्ट है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आप तो 100% इनकम को आप इनकम शो करो. 12 लाख से ज्यादा शो करोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा. शो करो का मतलब डिस्क्लोज करो, वहां पे कॉलम आता है. सपोज करो अनेक एग्जांपल लेते हैं, 18 लाख की इनकम है, 18 लाख की ग्रॉस रिसिप्ट है, सॉरी 18 लाख की ग्रॉस रिसिप्ट पे आपने बोल दिया कि मेरी इनकम में 11,90,000 शो करना चाह रहा हूँ, 11,90,000 शो करना चाह रहा हूँ, आपको कोई टैक्स नहीं देना है और आप जीएसटी में भी नहीं आओगे और आप गवर्नमेंट की नजर में जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में एक नंबर में हर साल 12 लाख कमाने वाले बन गए हो, अब आपको क्रेडिट भी मिलेगी, लोन भी मिलेगा, सब कुछ आपके लिए बेनिफिशियल होगा.
1: तो ऐसा ही करियर वैलिड हो जाता है
0: 100%. और इससे कहीं आप किसी कंपनी में, अगर सपोज करो किसी आप कंपनी में भी जॉब करने जा रहे हो, अचानक से जो ये जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं ये किसी कंपनी में यूट्यूब वाले मैनेजर बन जाते हैं, तो वो कैसे बताएंगे कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ और अब मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए. तो वो अगर जाके बताता है कि मैं 11 लाख अर्न कर रहा हूं तो उनकी सैलरी 11 लाख से शुरू होगी, अदरवाइज वो उनकी फ्रेश जॉब मानी जाएगी.
1: तो ये चीज इनके लिए एडवांटेज हो जाता है.
0: जितने भी सोशल मीडिया वाले हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, इंस्टाग्राम वाले हो गए, यूट्यूब हो गए, और भी किसी भी तरह की कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इवन वो होम बेकरी भी चला रहे हैं घर पे, इवन वो क्लाउड किचन भी चला रहे हैं, उन सब के लिए ये मैसेज है कि आप 12 लाख तक की इनकम डिस्क्लोज करते हो, कोई टैक्स नहीं देना है आपको.
1: ओके सर, ये काफी अच्छा पॉइंट आपने दे दिया और हमारे लिसनर्स के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है इस चीज से. दोस्तों बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी, तो चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ना कहते ना कुछ भी पालो गलतफहमी मत पालो, इधर उधर कुछ भी रखो लेकिन गलतफहमी कभी मत रखना. तो ब्रेक के बाद हम आपकी ऐसी एक थोड़ी गलतफहमियां क्लियर करेंगे जो आईटीआर से रिलेटेड है, वो है मिथ बस्टर राउंड. ब्रेक के बाद सुनाएंगे, तब तक सुनिए गाना.

0: भी फ्री हो गए भाई साहब, वो आपका रिफंड था, अगर आप आईटीआर भरेंगे तो उस अमाउंट का
1: मिलेगा।
0: आपको रिफंड मिलेगा। तो जब मैंने उसका भरा, तो ये बात मैं आपको 2-3 साल पहले की बता रहा हूं कि मैंने 3 साल के उसके 3 साल का टीडीएस इस साल के रिटर्न में क्लेम किया, तो तीनों साल का रिफंड पहली बार में उसके वापस आया। तो मुझे बड़े धन्यवाद देने के लिए आया, बोले कि यार 12,000 रुपए मेरे रिफंड आया, 4,000 मेरे टीडीएस था। तो मैंने कहा ठीक है, वादा मेरे को दे दो। बट वो मजाक की बात थी, लेकिन हाँ, अगर आप टीडीएस कटवा चुके हो तो डेफिनेटली आपको आईटीआर भरना है, एंड इन दैट केस एज पर गवर्नमेंट रूल यू आर लाइबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, आपको भरना ही चाहिए। दोनों बातें हैं, या तो रिफंड मिल जाएगा, अदरवाइज गवर्नमेंट को डिस्क्लोज ऑफ हो जाएगा, क्योंकि टीडीएस के जो रिटर्न होते हैं वो अलग है, वो कंपनी की जिम्मेदारी थी टीडीएस काटना, कंपनी ने भर दिया, या मैं कंपनी की बजाय कहूंगा पेयर, जिसने आपको पे किया है उसने टीडीएस काट भी दिया, टीडीएस का रिटर्न भी भर दिया, ये तो उसकी जिम्मेदारी से फ्री हो गया। लेकिन अब आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरो, या तो रिफंड मिलेगा, रिफंड कब मिलेगा? जब आपकी 12 लाख से कम की इनकम हो जाए।
1: तो इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि हमको
0: हंड्रेड
1: टीडीएस कट
0: परसेंट
1: गया है तो अब बढ़ने की जरूरत
0: एक
1: नहीं है क्या?
0: फोटोग्राफर है जो मेरे क्लाइंट है, तो क्या हुआ कि उनको जब भी पेमेंट मिलता था ना, तो 10%, क्योंकि प्रोफेशनल के केस में 10% टीडीएस काट के पेमेंट मिलता था। अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपए की उन्होंने साल भर में फोटोग्राफी करी, 90,000 रुपीज का उनका टैक्स कटा हुआ था। वो मुझे मिले 29th of July को, बोले क्या हम तो ऐसी इनकम ही नहीं है, 8-10 लाख रुपए कमाते हैं हम लोग, भरे कि इनकम टैक्स रिटर्न? तो मैंने कहा आप अपना पैन नंबर दो। मैंने पैन रजिस्टर्ड करा और मैंने वहां पे देखा तो रिफंड बना हुआ था 90,000। मैंने उनसे मजाक में पूछा, मैंने कहा जो 90,000 का रिफंड, अगर आपको 90,000 रुपए में इनकम टैक्स रिटर्न भरने से मिला दूं, दिलवा दूं, तो मुझे आप क्या दोगे? तो उन्होंने बोला 45,000 आपके। मैंने कहा डन। मैंने न, और अभी गवर्नमेंट इतनी शानदार काम कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना अच्छा हो गया कि कई बार आज मैंने रिटर्न भरा, नेक्स्ट 2 डेज में रिफंड आ गया।
1: अरे
0: उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ, तो मेरे पास फोन आया, दीपक जी 90,000 का रिफंड आ गया। तो मैंने कहा लाओ 45,000। तो लेने नहीं आ रहा, तो मजाक की बात थी, तो मेरा हक का पैसा है। ये फर्क है टीडीएस और
1: आईटीआर में। तो अगर मैं अपना बिजनेस या फ्रीलांस का पैसा सिर्फ कैश में लूं तो इनकम टैक्स वालों को थोड़ी ना पता चलेगा, इस पर क्या कहेंगे?
0: तो मैंने इसका अभी आपको मैंने जैसा बताया कि इनकम टैक्स वालों को नहीं पता चलेगा अगर, तो आपका भी तो इनकम टैक्स इनकम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। और जिस दिन आप रडार में आ गए, क्योंकि आपने कुछ तो बेचा ही है, कहीं से तो पेमेंट लिया ही है, अगर आप कुछ बेच रहे हो तो जिस व्यक्ति से आपने खरीदा है उसने तो लिखा है कि मैंने इस व्यक्ति को बेचा है, तो कहीं पे भी आप रडार में फंस सकते हो। और यहां पे मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूंगा कि इनकम डिस्क्लोज करने का कोई नुकसान नहीं है अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो। आप जो आप जैसा आप अभी बोल रहे थे कि मैं कैश में ले रही हूं, तो मैं क्यों बताऊं? तो इसलिए बताओ ताकि आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आए।
1: क्योंकि ये हमारे जोधपुर है, काफी मेंटलिटी ऐसी होती है कि टैक्स बचाने के चक्कर में हम सब कैश में लेते हैं।
0: टैक्स है ही नहीं, 12 लाख तक टैक्स है ही नहीं, तो आपको बताना ही चाहिए। और हाँ, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है और आप टैक्स बचाने के चक्कर में कभी कुछ गड़बड़ कर रहे हो, एक ट्रांजेक्शन किसी के साथ आपने किया है जिसको नोटिस आया हुआ है और आप उनकी चेन में आ गए, तो इनकम टैक्स वालों वाले फिर पूरी पूरी जो है ना वो फाइल कहाँ निकालते हैं, और अगर वो आ गए तो फिर आपको फिर टैक्स भरना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल, तो बचने का उनसे कोई तरीका नहीं है।
0: बिल्कुल, आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा का है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। यानी कि आप बता रहे हो कि मेरी इनकम तो है नहीं, मैं क्यों भरूं?
1: तो लेकिन अगर आप कहां जा रहा है?
0: हाँ बिल्कुल, अगर आपने फॉरेन ट्रिप कर लिया और फॉरेन ट्रिप करके आ गए और आपने बोल दिया कि मेरी इनकम तो है नहीं, फॉरेन ट्रिप करने वालों के साथ में भी ऐसा है कि शायद एक लिमिट है 2 लाख रुपए की, ऐसी लिमिट है या शायद कम भी होगी तो मेरे को एकदम रिमाइंड नहीं हो रहा है, वो लिमिट भी ऐसी है कि अगर आपने फॉरेन ट्रिप किया है तो आपको टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है उस एक लिमिट से ज्यादा, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा। तो जो पैसे वाले हैं वो बच नहीं सकते, जब तक बच पा रहे हैं, और आजकल तो यूपीआई का जमाना है तो कहीं ना कहीं आप आओगे ही आओगे
1: नजर में आ जाते हैं।
0: हाँ, 2-4 लाख 5 लाख वाले को इनकम टैक्स वाला भी इसलिए ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता है कि हम लोग तो वैसे टैक्स फ्री वाले हैं। ऐसा
1: ओके सर, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल उन यूथ के लिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। आजकल व्लॉगर्स और क्रिएटर्स को ब्रांड की तरफ से महंगे स्मार्टफोन्स, मेकअप किट्स या ट्रिप मिलती है, जो कि पीआर पैकेजेस होते हैं उनके लिए, तो क्या इन गिफ्ट्स पर भी टैक्स लगता है?
0: डेफिनेटली सेक्शन है।

0: और कि युद्ध के जो ग्रुप होते हैं उसमें ऐसी ऐसी अफवाहें होती है, तो उसको बस्ट करने का एक आपके पास चांस है क्योंकि आप एक्सपर्ट है और ये प्रोग्राम है यूथ के लिए,
1: बिल्कुल
0: तो एक मिथ बस्टर राउंड खेलते हैं हम।
1: डन।
0: तो सबसे बड़ा मिथ जो मैं अपने दोस्तों से सुनती हूँ, यार मेरी कंपनी ने तो TDS सब पहले ही भर दिया, पहले ही काट लिया, अब मुझे आइडिया फाइल करने की क्या जरूरत? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये
1: और
0: कितना सच
1: एक्चुअली
0: है?
1: ये इसमें बहुत गड़बड़ होती है। और मेरे मैंने खुद ने अपने क्लाइंट के साथ में ऐसा हुआ, एक क्लाइंट आया मेरे पास में, उसने मेरे को बोला कि यार मेरा TDS तो कट गया है, तो क्योंकि TDS कट गया है इसलिए अब मुझे ITR भरने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने उसका जब इनकम टैक्स का अकाउंट खोल के देखा तो पता चला कि पिछले 2 सालों में उसका TDS कटा हुआ है, बट वो टैक्स उसकी जो कैलकुलेशन बन रही थी उसमें वो टैक्स भरने के लिए टैक्स उसका बन ही नहीं रहा था।
0: ओ
1: से आज की तारीख में अगर किसी की 12 लाख से कम इनकम है तो
0: हाँ
1: कंपनी ने TDS काट लिया या पे करने वाले ने TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, लेकिन

0: हमारा ये जो गिफ्ट वाला जो सेक्शन है, ये हमारा आता है सेक्शन 28 के ही में, 28 जो कि हमारा बिजनेस प्रोफेशन का चार्जिंग सेक्शन है, सबसे मेन सेक्शन है, उसके अंदर ही पांचवे और छठे नंबर पे लिखा हुआ है कि एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन इफ द पर्सन इज प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, तो वो सारे गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल होते हैं, वो गिफ्ट इन काइंड है, वो भी उनकी इनकम में शो करना उनको जरूरी है। अगर कंपनी ने अपने खर्चों में शो कर रखा है और आपका नाम वहां पे, आपका नाम और पैन कार्ड नंबर अगर वहां पे डाले हुए हैं, तो ये आप मान के चलो कि डिपार्टमेंट तक आपकी सूचना कभी भी पहुंच सकती है। तो जैसे आपने नोटिस किया होगा, MR वगैरह जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो डॉक्टर्स को गिफ्ट देते हैं, अगर वो गिफ्ट लेजिटिमेटली विद इनवॉइस दिया है, तो गिफ्ट ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आपकी इनकम है। तो ये सारे जितने भी फ्री बीज, फ्री गिफ्ट्स आपको मिल
1: हाँ
0: रहे हैं, ऑल गिफ्ट्स आर यू हैव टू शो,
1: बिल्कुल
0: हाँ आपको शो करना ही चाहिए। एक और सेक्शन है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है, वहां पे लिखा है अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, कितना भी रिलेटिव की डेफिनेशन और ब्लड रिलेटिव की चेन होती है, मम्मी पापा दादा दादी, ससुराल में सास ससुर, हस्बैंड ननन जेठ, ये सब जो लोग होते हैं, ये पूरी एक चेन, एक पूरा एक चार्ट है, इनसे आपको कुछ भी गिफ्ट अगर मिलता है ना, तो वो टैक्स फ्री है,
1: अच्छा
0: और ऐसा गिफ्ट आपको शो करना चाहिए। अभी अभी एक आर्टिकल कल या परसों ही कहीं पे भी तो देखा था मैंने, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि इनकम टैक्स में एक पेच है, एक लूप होल है, कि रिलेटिव से आप कितना भी पेमेंट लेके शो कर दो, अगर रिलेटिव के पास में पैसा है एक नंबर में शो किया हुआ, तो आपके पास में वो वाली आई वी इनकम टैक्स से फ्री है। और उससे भी अच्छा एक था कि शादी के टाइम पे आपको जितने भी गिफ्ट मिलते हैं वो भी इनकम टैक्स फ्री होते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े घराने हैं वो शादी के टाइम पे गिफ्ट लेते हैं और अगले साल वाले इनकम टैक्स रिटर्न में शो करते हैं कि मैंने मैरिज के टाइम पे ये गिफ्ट लिया, क्योंकि एग्जेम्प्ट है इसलिए टैक्स नहीं भरना है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: ओके तो चलते चलते एक जनरल नॉलेज का सवाल है जो थोड़ा फिलोसॉफिकल भी है. हम टैक्स सब भरते हैं, पर एक आम नागरिक, एक यंग प्रोफेशनल के दिल में ये सवाल आता है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा टैक्स में क्यों दूं? मुझे इसका रिटर्न मिलता क्या है?
0: आज देश में जितने भी हाईवेज हैं वहां पे आपकी गाड़ी पहले 60 की स्पीड में भी गड़गड़ करती थी, और अब आप 120 की स्पीड में चला रहे हो, आपने पैसा कमाया, आपने टैक्स पे किया है, इसी वजह से आपका टायर भी कम घस रहा है। आपने बोला, तो मैंने भी उसे उसी वे में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे आप एम्स में जाके अपना इलाज करवा रहे हो, चाहे आप रोड पे जहां चल रहे हो बिना खड्डे की सड़कें आपको मिल रही है, तो ये सब आपके टैक्स का पैसा का ही है। चाहे गरीबों को एजुकेशन फ्री में मिल रही है, या फिर मैं कहूंगा गवर्नमेंट एजुकेशन पूरी तरह से, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन फ्री मिल रही हो, या फिर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयां, जांचें सब फ्री मिल रही हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके टैक्स का पैसा कहीं वेस्ट हो रहा है। हम जनरली अपने क्लाइंट्स को सलाह देते हैं कि टैक्स थोड़ा भरो, बट भरना तो चाहिए।
1: तो ये एक अच्छा हमारा काम भी हो जाता है, एक
0: बिल्कुल
1: हेल्प
0: आप,
1: कर रहे हैं हमारे जो कंट्री को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए.
0: 100%, जैसे ना अपन कई बार बोलते हैं ना, हम जब पैसा कमाते तो एक हिस्सा माँ का होता है, भारत माँ है,
1: बिल्कुल
0: तो जो हम इनकम कमा रहे हैं उसमें से एक हिस्सा अपनी माँ को पहुंचाना चाहिए। तो यही मैसेज मैं आपके लिसनर को देना चाहूंगा।
1: मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? बस ये आखिरी हमारा पॉइंट रहेगा.
0: लिसनर को एक मैसेज देना चाहूंगा, इनकम डिस्क्लोज जरूर करें, टैक्स भरने से टैक्स चोरी ना करें, टैक्स भरने से ना कतराएं, क्योंकि एक बार गलती करी हुई अगर आपको नोटिस आ जाता है, अगर आपने टैक्स नहीं भरा और नोटिस आ गया, तो पेनल्टी जितना टैक्स है उसके 200% तक पहुंच जाती है। और जो लोग कम पैसा कमा रहे हैं, 12 लाख से कम इनकम है जिनके, उन लोगों को तो डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि देश को पता चले, देश की जो पर कैपिटा इनकम को पता चले कि नहीं, हमारे देश में इतना सारा पैसा कमाने वाले लोग हैं और हमारी पर कैपिटा इनकम भी साथ साथ बढ़ी हुई है।
1: जी सर, थैंक यू सो मच सीएस दीपक केवलिया जी, आपने इतने
0: थैंक यू सो
1: कॉम्प्लेक्स
0: मच,
1: टॉपिक को एकदम पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर बना दिया. थैंक यू
0: बहुत
1: सो
0: बहुत
1: मच हमारे
0: धन्यवाद,
1: साथ जुड़ने के लिए.
0: थैंक यू सो मच।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सीएस और टैक्स एक्सपर्ट दीपक कुमार केवलिया की अदिति मर्डिया से बातचीत, और इसकी प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की. तो श्रोता, होपफुली अभी आप सभी को थोड़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी. तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और टाइम पर अपना ITR फाइल कीजिए. जुलाई डेडलाइन का काउंटडाउन ना शुरू हो चुका है, तो आज ही incometax.gov.in पर जाइए और अपना ई फाइलिंग कंप्लीट करिए, और देर मत कीजिए. तो चलिए फिर इस सफर में आगे बढ़ते और सुनते अगला गाना.

0: सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अदिति, मेरे मन में ना काफी दिन से एक सवाल चल रहा है।
2: पूछो।
1: कि जो मैसेज आता है किसी का और हम सीन पे जो छोड़ देते हैं बिना किसी रिप्लाई के, क्या वो रूड कहलाता है?
2: समझती। हाँ, मैं तो इसको रूड ही मानती हूँ कि आगे वाले ने मैसेज दिया है, हम देख के छोड़ दें तो आगे वाले के लिए रूड हो सकता है, और अगर हमको ऐसा मैसेज मिलता है तो हमारे लिए भी वो रूड हो सकता है, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग कर सकते हैं ऐसे में, और सीन जोन पे रखना काफ़ी बुरा हो जाता है, क्योंकि हम अलग थॉट्स सोचने लग जाते हैं कि उसने क्यों नहीं दिया वो सब, तो बुरा ही है।
1: वही, क्योंकि आजकल ना हमारी ज़्यादातर बातें मैसेज पे ही होती है। आपने कभी किसी को मैसेज किया और सामने वाले ने मैसेज सीन करके छोड़ दिया लेकिन जवाब ही नहीं आया, फिर वही हमारी ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है। क्या ना वो मुझसे नाराज़ है, क्या मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या फिर सच में व्यस्त भी हो सकता है।
2: बिल्कुल।
1: जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने एक थैंक यू लिखा और थैंक यू लोग का रिप्लाई नहीं करते लोग अक्सर थैंक यू का, तो सिर्फ एक सीन करके छोड़ दो, हमको ये लगता है अरे थैंक यू के रिप्लाई नहीं, मेरा मैसेज सीन करके कैसे छोड़ दिया।
2: बिल्कुल, आगे वाला काफी एक्सपेक्ट करता है कि कुछ तो रिप्लाई करेगा, कुछ तो रिप्लाई करेगा, पर हाँ थैंक यू का ऐसे कोई रिप्लाई नहीं है। पर मैं कहना चाहूंगी कि थैंक यू का जो रिप्लाई हम देते हैं यूजुअली वो होता है या फिर नो प्रॉब्लम या प्लेजर इज माइन, पर इसका एक नया वर्ड भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो है नो स्वेट।
1: नो स्वेट।
2: तो जब भी कोई आपको थैंक यू बोले तो नो स्वेट बोलिए, ताकि जो स्वेट होता है जैसे पसीना, तो आपको पसीना नहीं आया या आपको दिक्कत नहीं हुई या आपने जो भी काम करा वो दिल से करा, तो आप नो स्वेट बोलेंगे तो भी इक्वल है नो प्लेजर इज माइंड के। या
1: अरे वाह, फिर तो मेरे को एक नया वर्ड मिल गया, अब से ना लोग मुझे रूड नहीं बोलेंगे, मैं थैंक यू के बाद यही लिखूंगी, नो स्वेट।
2: बिल्कुल, ये हमारे श्रोताओं के लिए वर्ड ऑफ द डे भी हो गया। इसी के साथ सुनिए ये सॉन्ग।

मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार

0: योगी।
1: तो दोस्तों इसी गाने के साथ लेते हैं हम विदाई। हम थे मैं अदिति मौर्या और मेरे साथ थी,
2: यानी कि मैं आपकी दोस्त स्वस्ति। उम्मीद है इस एक घंटे में जितनी देर आपने हमें सुना है उतनी देर आपकी टेंशन ने छुट्टी ले ली होगी।
1: बिल्कुल। और इस प्रोग्राम की प्रस्तुति और संयोजन राजेश लामरोड द्वारा थी। नमस्कार।

युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय शाम के 6 बजने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुने पहले हिंदी और उसके पश्चात 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशु

0: संतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
1: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंदकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced regarding bringing a bill with provisions for strong action in cases of paper leaks will be introduced in the Parliament. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
4: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
3: Spokesperson of the CJP, Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands.
5: There is an in principle agreement on compensation and legal cases. It is positive.
3: Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that Prime Minister

अब सुने कार्यक्रम विवरण। विवरण में जाने आज और कल के शेष कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त जानकारी। जानकारी कार्यक्रमों के प्रसारण एवं प्रसारण समय संबंधी। पहले जाने आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा रात्रि 8:15 पर। गैर फिल्मी नगमों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोता सुन सकेंगे ये कार्यक्रम रात्रि 9:15 पर। और देशकान, इसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत 6:15 पर। किसान भाई बहनों के लिए चौपाल सजेगी 7:30 और 7:30 पर होगा कार्यक्रम सीमाड़ेरी गुंज। फिल्मी गीतों का आनंद उठाइए फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:15 और 9:30 पर। रात 10 होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत। श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण और अब जानिए कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। कल सवेरे 6:05 पर कार्यक्रम श्री रामचरितमानस और 6:15 पर भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन। ये कार्यक्रम वंदन आप सुन सकेंगे सुविचार के संग। कल सवेरे 7 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम का श्रोतागण लुत्फ उठा सकेंगे कल सवेरे 10:30 पर, दोपहर 12:30 और रात्रि 9:15 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, ये कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सवेरे 10 और दिन में 12:00।

किसान भाई बहनों के लिए चौपाल सजेगी। साय 7 बजे और दोपहर 1:15 पर होगा कार्यक्रम कृषि जगत। इस कार्यक्रम में विषय रहेगा भिंडी की खेती के लिए प्रबंधन। महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी वाटिका कल दोपहर 1:15 पर प्रसारित होगा। युवा श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम युववाणी होगा कल शाम 5 बजे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा कार्यक्रम कल रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम रहेगा विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। श्रोता, आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत, कार्यक्रम है देशगान।

श्रोता अभी सुन रहे थे ये देश गान, मातृभूमि की रक्षा। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय कठोर दण्डस्य विधानाय च एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृति प्रदत्ता। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बलारी गुंतकल रेल परियोजनायै अनुमोदितं 64.12 लाख कोटि परिमितं द्रव्यम्। अपरत्र अंगीकृता त्रि रसायनोद्यान संवलित भव्य रसायन परियोजना। केन्द्रीय मन्त्रिभिः सीजेपी प्रतिनिधि मण्डलेन सह नवदिल्ल्यां सम्पादितम् उपवेशनम्। श्वस्तावत् पुनः प्रवर्तयिष्यते द्विपक्षीय वार्ताक्रमः। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणं समाश्रित्य संसदि अद्यापि अनुवृत्तः कोलाहलः। प्रतिपक्षस्य विरोधोद्घोषेण सोमवासर पर्यन्तम् अपवारितं संसदः कार्यजातम्। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य अथ मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्र संघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन प्रकटीकृतः तीव्रः खेदः। अपि च विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः प्रागुपान्त्य चक्रं विजित्य उपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत

0: प्रक्रियाया चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य सहैव मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्र संघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन तीव्र खेद प्रकटीकृत। संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी इत्यसौ प्रावोचत् यत् अन्येषु देशेषु एतादृशानां घटनाक्रमाणां संयुक्त राष्ट्र संघेन तीव्र निन्दा क्रियते, परञ्च पाकिस्ताने जायमानेषु एतादृशेषु कृत्येषु अवधानं नैव प्रदीयते। सः शान्तिपूर्ण विवाद निवारण तन्त्राणां सुदृढीकरणम् इति विषये आयोजिते सुरक्षा परिषदः मुक्त विवाद कार्यक्रमे भाषमाणः आसीत्। अद्य सर्वोच्च न्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे केन्द्रीय प्रशासनं राष्ट्रिय परीक्षाभिकरणञ्च परीक्षा परिष्काराणाम् अनुष्ठान प्रगतिमालक्ष्य विशद शपथ पत्रम् उपस्थापयितुं समादिदेश। पर्यावरणविदः सामाजिक कार्यकर्तुः च सोनम वांगचुक इत्याख्यस्य 26 दिनात्मकं सुदीर्घम् अनशनम् ह्यः रात्रौ गुरुग्रामस्य एकस्मिन् निज चिकित्सालये विश्रान्तिमगात्। एतदनशनम् जेपी नड्डा जितेन्द्र सिंहयोः गरिमामय उपस्थितौ सम्पन्नम्। वांगचुकवर्येण निगदितं यत् बहुविधानां पक्षाश्रयणामुपरि सुदीर्घ विचार विमर्शस्य अनन्तरमेव एषः निर्णयः गृहीतः। अद्य भारतस्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः भारत रोमानिया देशयोः मध्ये आर्थिक निवेश सम्बन्धानां विस्ताराय आह्वानम् अकरोत्। तया प्रोदीरितं यत् द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये गभीर वाणिज्यिक सहयोगाय अदूषिता अनन्ता च क्षमता विद्यते। विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः मिस्र देशस्य हबीबा रिज्क इत्येताम् 11-7 11-5 6-11 11-9 इत्यंकान्तरालेन पराभूय प्रागुपान्त्यचक्रं विजित्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत्। विजयेनानेन अनाहत सिंहः अस्मिन् विश्वस्तरीय द्वन्द्वे अश्रान्तं द्वितीयवारं उपान्त्यचक्रं प्राप्य प्रथम भारतीय क्रीडिकात्वेन इतिहासम् अरचयत्। सम्प्रति सा खलु स्वर्णपदकस्य शीर्षक विजयाय परिगणिता वर्तते। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अब सुने हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि, संसद में भी गतिरोध जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्ति के लिए महीने भर का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद ये वार्ता हुई। सरकार की ओर से सीजेपी की 2 शर्तों को स्वीकार करने के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी। सीजेपी की ओर से सौरभ और आशुतोष राणा ने श्री नड्डा को अपनी मांगे बताई। इसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने और हाल ही में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग शामिल है। मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने

केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर आज एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में सुधारों को संस्थागत रूप से देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने

0: में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि देश भी यही चाहता है और विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इस मुद्दे पर संसदीय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे देश के युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।
1: नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए, हम तो आज भी फिर से अपील किया है। हमने आज भी, राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी। संसद के दोनों सदनों में आज पांचवें दिन भी हंगामा जारी रहा। नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा को लेकर तथा अन्य विषयों पर विपक्ष के शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद दोनों सदनों के कामकाज पर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सत्र के पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, किंतु विपक्ष बिना किसी ठोस शर्त के चर्चा में भाग नहीं ले रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वंदे मातरम बिल पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 1264 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक के अहम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास रसायन भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना की घोषणा 2026-2027 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसके तहत 3 प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जल संचय और जल भागीदारी पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज जयपुर में आयोजित राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाचारों से राजस्थान जल प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक जल प्रबंधन और हर घर जल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, ऐतिहासिक यमुना जल समझौते और नर्मदा अवार्ड समझौते ने प्रदेश में जल सुरक्षा के नए युग की शुरुआत की है।
2: दूसरा हमारा एमओयू हुआ और वो हुआ यमुना समझौते का। यमुना का पानी हमें कैसे मिले तो हमने केंद्र में भी बात की, हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब और हम बैठे और उसमें हमने फरवरी के महीने में एमओयू हमें उसका किया। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अभी हमारा यमुनाओं का एमओयू भी हो गया और उसमें हमको पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा, उसकी डीपीआर भी बन गई, अगले कुछ दिनों में उसका भी शिलान्यास होने वाला है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। नशा मुक्त राजस्थान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज जयपुर में नशा मुक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और भावी कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को इसके लिए जल्द परिपत्र जारी करने और नशा मुक्ति के लिए राज्य में महीने भर का विशेष अभियान चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की जाए। श्री बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों में मादक पदार्थों के सेवन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीमा क्षेत्र में ड्रोन से नशीले पदार्थों को भेजे

0: जाने पर चिंता जताते हुए इस संबंध में जल्द प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज कोटपुतली पहुंचे। उन्होंने राजकीय बीडीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। चिकित्सा मंत्री ने विभिन्न वार्डों का भी परीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा केंद्र पर डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए संसाधनों की कमी भी नहीं होनी चाहिए।
1: मेरा दो चीजों का फोकस है। नंबर एक, चाहे सब सेंटर है, चाहे पीएचसी है, सीएचसी है, एसटीएच है, डीएच है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलॉटेड इक्विपमेंट है उसकी कमी होनी चाहिए। कुछ स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स चाहिए थे, हमने नोट कर लिया, हम जल्दी देंगे।
0: बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में आज से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी परिवारों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी सर्वे की आखिरी तारीख बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है। आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर सर्वे का काम पूरा करने को कहा है। गौरतलब है कि राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से 10 जुलाई से शुरू हुआ सर्वे का काम 23 जुलाई तक करीब 70% ही पूरा हो पाया है। इसे देखते हुए सर्वे की अवधि को बढ़ाया गया है। इस बीच भीलवाड़ा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर निकाय चुनावों से जुड़ा काम पूरा कर लिया गया है।
2: राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनावों को लेकर जितना काम किया जाना था, चाहे वो निकायों की सीमा वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके पुनर्सीमांकन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्गठन का मामला हो, वो सारे के सारे काम हम 2026 की शुरुआत में पूरे कर चुके हैं। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर लंबित था, उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता।
0: राज्य के पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में गरज चमक के साथ बरसात का अलर्ट बताया है। साथ ही कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में मध्यम से तेज पानी बरसा। बांसवाड़ा में आज सुबह से ही बरसात का दौर बना हुआ है। माही डैम में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। भीलवाड़ा में भी रिमझिम बारिश हो रही है। पाली जिले के सादड़ी, देसूरी और नानबेड़ा सहित कई जगह पिछले तीन दिनों से बारिश का सिलसिला रुक रुक कर बना हुआ है। जवाई बांध सहित विभिन्न स्रोतों में पानी की आवक लगातार जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल सभी जिलों में येलो और जालौर तथा सिरोही में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी दक्षिणी राजस्थान से उत्तर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में खासकर राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम भागों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। अभी भी दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में अगले दो तीन दिन कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं राज्य के बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 3 दिन मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 आयोजित की गई। बोर्ड की ओर से महिला और बाल विकास विभाग में 72 पदों के लिए ये परीक्षा ली गई। सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक पारी में ये परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि, संसद में भी गतिरोध जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्ति के लिए महीने भर का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले दो दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसकी लेखिका है नीलिमा दादिज। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे अजमेर जिले में पिछले महीने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जनसेवा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त मिली, विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाएं जुड़ी और विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए जानते हैं पिछले महीने की प्रमुख गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। इसके तहत अजमेर जिले के लगभग 1,65,000 किसानों के खातों में सहायता राशि पहुंची। इस अवसर पर तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिले के सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम हुए, जहां किसानों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों केकड़ी के दौरे पर रहे। कृषि उपज मंडी समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आम जन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली राज्यमार्ग के फोरलेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास किया। साथ ही केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अजमेर के हाथीखेड़ा क्षेत्र में बालिका सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का पिछले दिनों शुभारंभ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भूमि पूजन किया। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विद्यालय समग्र शिक्षा अभियान के तहत विकसित किया जाएगा। परिसर में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, प्रशासनिक भवन, खेल मैदान, परेड ग्राउंड और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पुष्कर क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने काठोदा और पालड़ी गांवों में 2,28,00,000 रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें दोनों गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्र और काठोदा की संपर्क सड़क शामिल है। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और आवागमन की सुविधा को मजबूती मिलेगी। राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका उद्घाटन किया। इस सुविधा के शुरू होने से जिले के मरीजों को आधुनिक सर्जरी की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर हनुमान सिंह राठौड़ ने कार्यभार संभाला। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद रिक्त होने के बाद सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। आयोग में डॉ आनंद और डॉ दीपक कुमार ने नए सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को नेचर इंडेक्स 2026 रिसर्च लीडर रैंकिंग में देश के शीर्ष संस्थानों में 79वां स्थान मिला है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी में विश्वविद्यालय ने 67वीं रैंक हासिल की है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिले में शहरी सेवा शिविरों का आयोजन जारी है। शिविरों में पट्टे, नामांतरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस लाइन मैदान में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने योगाभ्यास किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आयुर्विज्ञान की मानकीकृत सिंधी शब्दावली तैयार करने के लिए 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से चिकित्सा विशेषज्ञ, भाषा विशेषज्ञ और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लगभग 6,000 अंग्रेजी और हिन्दी शब्दों के मानक सिंधी पर्याय तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, नीट पेपर

0: प्रदर्शन मामला माथे कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिल्या। संसद में आई अड़चन जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में तीन केमिकल पार्क बनावन सारू भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े नशारी लत न जड़ों खत्म करण सारू महीना भर रो खास अभियान चलावन रा हुकम दीना। और प्रदेश रा उगनी और लंकाऊ हल्का माए आवता दो दिन कछे कछे जबरदस्त बारिश रा आसार। मौसम विभाग काल प्रदेश रा सगला जिला माए बरसात सारू चेतायो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत भाजपा रा कई नेताओं और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी रा नुमाइंदा बीच आज नई दिल्ली में दूजा दौर री मीटिंग भी। न्यारी न्यारी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां रे खिलाफ नौजवानों री अगुवाई में करया जा रहा विरोध प्रदर्शन बीच आप बातचीत करी छी। सीजेपी रा नुमाइंदा सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके और दीपक बलियान शांति सागे प्रदर्शन करण वाला रे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नी करण और हाल ही माए भी परीक्षावां माए गड़बड़ियां रो नुकसान झेल रहा विद्यार्थियों रा परिवारा ने मुआवजो देवन री शर्तां सरकार कानियों मान्या पाछे बातचीत री सहमति जताई। खबर नवी संसागे बातचीत करता था का स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहो कि सरकार काल प्रतिनिधि मंडल सागे एक और दौर री चर्चा करेला। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पेपर लीक मामला पाछे सुधार लागू करण रा काम जुड़ियो हलफनामो दाखिल करण रा हुकम दीना है। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे री पीठ ई मामला री सुनवाई करता थका कहो कि हलफनामा माए सुधारा ने संस्थागत रूप देवन सारू करी जे जतन री साफ जानकारी देवनी चाहिए। पीठ कहो के वा ई मामला माए कड़ी निगरानी राखता थका लगातार इनरो जायजो लेवेला। ई मामला माए आगली सुनवाई 27 जुलाई ने भेला। इबीजे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षावां माए गैर वाजिब साधन काम लेवण रोकण सारू करड़ो बिल लावण माए कोई मोड़ो नी करण माथे जोर दीनो है। संसद परिसर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका रिजिजू कहो कि देश री आई मर्जी है और ओ बिल पास वेवण माए कोई अड़चन नी आवनी चाहिए। वे कहो कि सरकार विद्यार्थियों रो भविष्य सुरक्षित राखण सारू कई खास जतन कर रही है। रिजिजू कहो कि गर विपक्ष ई मुद्दा माथे संसदीय कार्रवाई माए अड़चन पैदा करेला तो वन देश रा नौजवाना री रीस रो सामो करनु पड़ेला।
1: नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए। हम तो आज भी फिर से अपील किया है। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेपर लीक उंजुड़िया मामला नी सुनवाई सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावन रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा फैसला री सराहना कीनी है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कहा वे कहो के अदालता माए मामला नी सुनवाई रोजीना फैला। संसद रा दोनों सदना माए आज लगातार पांचवा दिन हंगामो भयो। नीट पेपर लीक मामला और दूजा मुद्दा माथा चर्चा री मांग न लेर विपक्ष रा सदस्यां रा शोर शराबा बीच लोकसभा और राज्यसभा री कार्रवाई बार बार टालनी पड़ी। ई पाछे दोनों सदना री कार्रवाई सोमवार ताई टाल दी रीजी। लोकसभा री कार्रवाई शुरू हुए ताई संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि सरकार सत्र रा पहला दिन नोई नीट पेपर लीक मामला माथा चर्चा सारू तैयार ही, पण विपक्ष बिना ठोस शर्त चर्चा माए शामिल नी भे रियो है। राज्यसभा माए विपक्ष रा शोर शराबा बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वंदे मातरम बिल पेश कीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल री

0: अली मामला ने समिति री मीटिंग हुई। इनमें प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान रातेत रेल नेटवर्क बधावन सारू 1264 करोड़ रूपया री मल्टी ट्रेकिंग परियोजना ने मंजूरी दी रही ची। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबर नवीसा ने मीटिंग में करी जा खास खास फैसला ने जानकारी दीनी। वे बतायो कि मंत्रिमंडल देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क बनावन सारू भारत औद्योगिक विकास रसायन भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। ई योजना रो ऐलान चालू माली साल रा केंद्रीय बजट में करी चियो हो। इन ते 3 प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क बनाया जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पानी भेड़ो करण माथे जोर दीनो है। वे आज जयपुर में राखी जिया राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव में बोल रहा है। शर्मा कहो कि नुआ काम कर रह राजस्थान पानी रा प्रबंधन रा हल्का माय राष्ट्रीय मॉडल बनेला। वह कहो कि पानी रा बेहतर प्रबंधन और हर घर ताई पानी पुगावन माथे सरकार रो खास ध्यान है। मुख्यमंत्री कहो कि राम जल सेतु लिंक परियोजना ऐतिहासिक यमुना जल समझौता और नर्मदा अवार्ड समझौताओं राज्य में पानी री उपलब्धता तय करण रा नुआ दौर री शुरुआत हुई है।
1: दूसरा हमारा एमओयू हुआ और वो हुआ यमुना समझौते का। यमुना का पानी हमें कैसे मिले तो हमने केंद्र में भी बात की। हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब और हम बैठे और उसमें हमने फरवरी के महीने में एमओयू हमें उसका किया। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अभी हमारा यमुनाओं का एमओयू भी हो गया और उसमें हमको पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा। उसकी डीपीआर भी बन गई। अगले कुछ दिनों में उसका भी शिलान्यास होने वाला है।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश में नशारी लत न जड़ू खत्म करण सारू खास अभियान चलायो चावेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नशा मुक्ति अभियान ने असरदार तरीकाओं लागू करण और ई सारू कार्य योजना रो जायजो लेवन बाबत आज जयपुर में राखी जी मीटिंग में महीना भर रो खास अभियान चलावन बाबत हुक्म दीना। वह कहो कि नशा मुक्ति सारू हर लेवल माथे जवाबदेही तय करी जावनी चाहिए। श्री बागड़े कहो कि विश्वविद्यालय में नशीली चीजा काम लेवन वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावनी चाहिए। वह सरहदी हलका में ड्रोन रे जरिए नशीली चीजा भेजण माथे चिंता जताता थका इनने रोकण सारू असरदार कार्रवाई करण बाबती कहो। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज कोटपुतली रा सरकारी बीडीएम अस्पताल रो दौरो कर वठ व्यवस्था रो जायजो लीनो। वे न्यारा न्यारा वार्डा रो दौरो कर सुबिता देखा और एहलकारा सागे मीटिंग कर हालात रो जायजो लीनो। चिकित्सा मंत्री कहो कि अस्पताल में डॉक्टरा की कमी नहीं होनी चाहिए। वे कहो कि बेहतर इलाज रा सुबिता सारू साधना री कमी नहीं होनी चाहिए।
2: मेरा दो चीजों का फोकस है। नंबर एक, चाहे सब सेंटर है, चाहे पीएचसी है, सीएचसी है, एसटीएच है, डीएचए, चाहे मेडिकल कॉलेज है, इम्पोर्टेंट चीज ये कि डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, हमने चाहते हैं कि कोई भी लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलॉटेड इक्विपमेंट है उसकी कमी होनी चाहिए। कुछ स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स चाहिए थे, हमने नोट कर लिया, हम जल्दी देंगे।
0: इन बीच बांसवाड़ा महात्मा गांधी जिला अस्पताल में आज घना जोखिम सागे आस वाली महिलाओं रा सुबिता सारू प्रसव सखी व्यवस्था शुरू करी ची। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग जुड़िया परिवारों रा राजनैतिक प्रतिनिधित्व संबंधी सर्वे री आखिरी तारीख बधार 26 जुलाई करती नी है। आयोग रा सचिव अशोक कुमार जैन इंबारा माय सगला जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी कर सर्वे पूरो करण सारू कहो है। ध्यान जोग है कि राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप रे जरिए 10 जुलाई उ शुरू करी जो सर्वे रो काम 23 जुलाई ताई करीब 70% पूरो फे सक्यो है। चिन्ह ध्यान राखता थका सर्वे री मियाद बधाई ची है। इन बीच नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा भीलवाड़ा माय खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि राज्य सरकार रा लेवल माथे निकाय चुनाव करावन जुड़ो काम पूरो कर लियो चियो है।
3: राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनावों को लेकर जितना काम किया जाना था, चाहे वो निकायों की सीमा वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके पुनः सीमांकन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्गठन का मामला हो, वो सारे के सारे काम हम 2026 के

0: बाद में पूरे कर चुके। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डो के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर लंबित था, उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका।
1: अरब मौसम कजरा उगनी और लंका उगनी हल्का माए भारियों घनी भारी बिरखा रा आसार है। मौसम विभाग आवता दो दिन माए कोटा भरतपुर और जयपुर संभाग माए बिरखा सारू चेतायो है। कोटा अजमेर उदयपुर जोधपुर और बीकानेर संभाग माए बारिश चालते रहवन रो अनुमान है। लाडला 24 घंटा माए राज्य रा उगनी और अतुणी हल्का माए जोरदार पानी बरसियो। बांसवाड़ा माए आज ही सवार उई बिरखा वह रही है और माही बंधा माए लगातार पानी आ रियो है। भीलवाड़ा माए छांटो छिटको वह रियो है। पाली जिला माए सादड़ी देसूरी और नानबेड़ा समेत कई ठोड़ा लाडला तीन दिन रुक रुक कर में बरस रियो है। जिला रा जवाई बांध समेत न्यारा न्यारा बंधा और तलावा माए लगातार पानी आ रियो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के काल राज्य रा कई जिला माए बारिश रो येलो और जालौर और सिरोही माए ऑरेंज अलर्ट जारी करी जियो है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामला माथे कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिलिया। संसद माई अड़चन जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश माए तीन केमिकल पार्क बनावन सारू भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नशारी लत न जड़ो खत्म करण सारू महीना भर रो खास अभियान चलावन रा हुकम दीना। और प्रदेश रा उगनी और लंकाऊ हल्का माए आवता दो दिन कठे कठे जबरदस्त बारिश रा आसार। मौसम विभाग काल राज्य रा सगला जिला माए बरसात सारू चेतायो। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। किसान भाई बहन अब सुने कार्यक्रम चौपाल। चौपाल में आज का विशेष है झूम को।

0: साथियां ओ है राजस्थानी लोक गीता और लोक भजना रो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको और कार्यक्रम में आपरा कागद बाचण सारू और ईमेल पढ़न सारू आपरे साथे है आपरो साथी गुरविंदर बिश्नोई। कागद आयो है पहला पुलिया चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सु लिखे है दिनेश सोडा, रुद्राक्ष, भव्यांश, रमन सोडा और जितेंद्र सोडा। और ईमेल आयो है भोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी। और ईमेल आयो है गांव बीकमकोर सु गौतम परिहार, अरविंद परिहार, सोहन परिहार, आरती, दुर्गा, मंजू, संगीता, कुलदीप, हंसपाल और ओम प्रकाश परिहार। और कागद आयो है गांव नोखड़ा चारणान सु लिखन वाला है सरपंच हरभज राम, बंसी राम, सजनानी, लादू राम, गोदारा, मांगी लाल, निरंजन सिंह, आमला, बाबूलाल, सुधार और आना सगड़ा साथी। और कागद आयो है गांव बिडासनी सु लिखन वाला है भंवरलाल बाबड़ और आना सगड़ा साथी। गांव केलवाद सोजत सु और कागद लिखियो है सुरेश मेघवाल, मंजू, निशा और कृष्णा मेघवाल। खुड़ेचा बिपाड़ शहर सु माने कागद लिखे है हीरा लाल श्रीमाली, जिज्ञा देवी श्रीमाली, सीमा, खुशी, विशाल, मन्नत, सुनील, किशोर, ओम प्रकाश श्रीमाली और आनो सगड़ो परिवार। और कागद आयो है गाँव अरणियाली तहसील धोरी मीना बाड़मेर सु लिखन वाला है फरसाराम खत्री, भवानी शंकर खत्री, पंकज खत्री, रेखा, निर्मा, किरण, शारदा, भाग्यश्री खत्री, हार्दिका, सूरज देवी खत्री और आनो सगड़ो परिवार। गांव चाडी सु उत्तम चंद छाजेड़, राणूलाल छाजेड़, शांतिलाल छाजेड़, कमला देवी छाजेड़ और आनो सगड़ो परिवार।
1: आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना।

पतरी लिखूं पी वने मारो कागज भीज गयो अरे नेने जलड़ो मावे नहीं मारो हिवड़ो।

रात अंधारी पवश पड़े कद पहुंचा पाला ए जुना बेरती तारिया जुना बेरती तारिया मारा बेरी बरसाला गड़ो।

0: किसान भाई बहन अभी सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। चौपाल में आज का विशेष था झूम को। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम सीमानेरी गूंज, इस संदेश के बाद।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नाटक मत बजाओ, ओडाली है मैं आ रहा।
1: नवला बा ओडाली कटेड़ी है
0: तो कोटी अटकड़ है जो आ रहा मैं कौन है वो?
1: ओ नवला बा अगजी आयो।
0: ओ अगजी वाओ अगजी वा अगजी है जी को देखा जी, हमें तो अगजी आया बगजी में।
1: हाँ मैं तो मारे बाढ़ जो थे तो बस
0: बाढ़ तो जो क्यों को नहीं अगजी थे पहल के कहे हो के मैं वो जी को मैं तो यो कौन छाटा सिर को हुई हूँ।
1: या तो पूजा पाठ शुरू कर जल्दी से छाटा सिर तो हुए नहीं बच्चे में।
0: अरे
1: हाँ मैं बरस है चिंता मत आ जाई
0: यू।
1: ओ देखो तो हाँ
0: बाजरी आया है दो तीन दिन होया है।
1: हाँ
0: पर तपत थोड़ी कम हुई है। मारे पहला देखो दिन थोड़ा हूँ दोरा का दिया
1: उठा है मने देख के
0: तावड़ियो घणो पड़तो देखा ही नहीं आवती मारो कह जीव तो रो घणो होतो अमूज नहीं आवती और बिजली हूँ घणी हवा करतो और पंखे आप मोटियार पंखा ही लाया हार बाए साड़ी मशीन ही है कहता लाऊं ना पर मैं ना दीजियो।
1: हाँ ऐसी वालो
0: हाँ मैं क्या भाई देखो क्या बिजली की खपत हली हो चाहिए ना पर की कोनी हूँ कोई मोटिया तो हूँ कोनी।
1: अच्छा
0: ये बात मैं क्या है भाई देखो क्या कुदरत में जुड़ा बादल आया
1: मैं ठंडा हो गया
0: ठाट बापरी छोड़ गई और पाची की आड़ंगी हो ही नहीं बात हो ही हो बात है देखो कुदरत रा खेल है
1: खेल है सा
0: और कुदरत अपना खेल खेले है और हैं बात है जो की है पड़ा है कि देखो हम भाई सहन थोड़ा कौ है काम धंधे में ला दिया कोई है जो थोड़ा घड़ा हड़बाव में हुआ तो बे आपने कह दी।

0: मशीनरी आएगी तो मैं उपयोग करे
1: बात आज खड़े ही हल्ली वह नहीं बता है। हमें दो महीना हम तल चौमास हो तो चार महीना हमें दो मास हो गो दो महीना रिज कह नहीं
0: बस
1: दो महीना रे बीज है दो महीना रे कह नहीं
0: मेहनत
1: खेत खला में जाना है टाइम न कह नहीं नमस्कार है तो भाई देखो आज तो मोटी है क्या बादलिया आया तो मन में आ है भाई के बारिश बारिश
0: बारिश बारे आशा रहे मतलब आ जाए
1: है हो तो कह नहीं आसमान से कह के भाई देखो मिन कह रही जीवरी हुए पर बादलिया आया तो जरूर कह नहीं की मन में तो है ही है भाई।

0: दो महीना रे बीज है, दो महीना रे कहनी
1: मेहनत है पूरी,
0: खेत खला में जाना है और टाइम न कहनी नमस्कार है और तो भाई देखो आज तो मोटी है क्या बादलिया आया तो मन में आ है भाई के बारी बारी
1: बारे साहब बारे ओ आशा रहन मन मतलब आ जाई
0: ए है हो तो कहनी का आसमान से कह के भाई देखो मिन गारी जीवारी वे पर बादलिया आया तो जरूर कहनी के मन में तो है ही है भाई बारी जद हैं बाता वो यो अब देखो के पानी पीऊ नो है वो है जी को कहनी मंगा मंगा कहनी खुंजो खाली को दाव डांडे रन बन कहो कह रिंद रोई रहा जिंदावर बारी है जी कहनी सुविधा होगी पालर पानी भरियो है जी को कोई
1: मैं चिंता मत करो मैं
0: दोना बकरी ही पी और हूं तो डांडे ही पी तो मिनक पी तो हैंगा नहीं करा रहा यो
1: करा है चारे लीलो ही गुणो
0: ओई ओई हैं कहनी के भाई देखो बन ढुको जी को हैं बातें पर है वो अगजी आप बताओ कि एकदम गोरम घोर बरसात क्यों नहीं हुआ वो थोड़ी थोड़ी क्यों हुआ
1: नवला भाई यूं है थोड़ा मौसम भी अड़ो जो है आजकल मौसम विभाग भी यही है कि गर्मी हल्ले हुए तो हो जाए अब मैं रोज रो तो नहीं हो सके
0: हाँसी बात है पर देखो घाटरिया काम
1: देखो पेड़ विजय कटा दी तो क्या करो मैं पेड़ तो है ही नहीं
0: भाई वो तो मारे रूकड़िया लाइवड़ा पड़िया के हैंग रोप दिया थोड़ो बीच दस पंद्रह दिन पानी पायो ना मैं मारे कह दी के बैठा हो जी मैंने क्या देखो मारू तो है जरी वो तो डाणी करनी चाहिए कर जाऊ था जाओ तो मैंने कोई मिचा कह नहीं बटुआ बह तो मनी कभी याद करी के फलान जी है जो रुकड़िया रोपिया ठीक है नहीं
1: सही बात है
0: बाकी हूँ मारे एक बार बसियत करावनी है बसियत कराओ
1: क्यों
0: बसियत कराओ है देखो जो को क्या भाई कोई हरगन चीज भूस है पयो पिंजर है उन बात है लारे लड़ाई झगड़ो नहीं है
1: कटे जा रही है
0: जाओ पद तो थारी है मंदिर बात हम जो ये कही जीमन की बाढ़ जो भाई है जिको कह नहीं के अरे
1: जीमर तो मैंने यू जिमार दो
0: अरे जीमा हुआ पर भाई कह नहीं एक भागोड़ो ऊंट वह नहीं वो ओडी हम जाके क्या जीव थी है जो कह नहीं की मारे मुंडे मात देखो हो मुड़को हो मन में जानो भाई है जी पांच भगवान जी
1: मानला बात है
0: अच्छा भाई कटी को नहीं हूँ तो हैंग करा दे है जी मोटियारा ने कह दे भाई मारे पयो पिंजर है वो स्कूल में कमरियो बना दीजो कोई प्यू बना दीजो कोई है जी को कह नहीं के कोई छोरिया है बाने कोई है जी को भाई देखो ब्याह दी जा कोई भाई देखो कोई
1: अच्छा काम में काम आ जाए
0: बात है पर खैर की कोई बड़े तो हैंगवाजी बड़े और कुदरत कभी भेदभाव नहीं कर
1: नहीं
0: है कौन तो हमें कोई एक देखो नहीं बादली आ रहा कोई गीत लो होना को नहीं मैं दो मास हो कह नहीं चार मास हो चौ मास हो छोड़ दो मास हो
1: नलबा
0: होना
1: लो ना लबा गाना होना

0: वाह भाई ओ वाह, आज मारी बात ली ध्यान देखो बरसेली
1: बरसेली
0: आज उम्मीद है दूजी के कोनी है ओ अगदी
1: हां ना लबा
0: थे है जको बो बड़दारे गुगरिया बंद बांधी उड़ान करता नो गीतड़ो हुता आया नी है
1: हां
0: ओ है जको गीत तो देखो आपरी टाइम माते बड़ो चाहो और है जको कह नी आपकी बाका फिल्म है वो मन को याद को नाम उन गीत है वो
1: है नी भरत कुमार है नी मनोज कुमार मारे फिल्म रो गाना है
0: ओ ठीक
1: उपकार फिल्म है मेरे देश से धरती सोना हुआ
0: हाँ बात मनोज कुमार जी है नी
1: हाँ
0: भरत कुमार ओ ठीक ठीक डिगा क्या फूट रहा करता आदमी हा हूँ आऊ मिली उड़ो हूँ दो तीन बार
1: हाँ चे
0: हाँ और ये तो क्या देश भक्ति री है जो फिल्म
1: हाली बनाता करता और इन वास्तव नाम है नी मनोज कुमार से तो है जी भरत कुमार पड़िया भारत यानी पुत्र जो भारत पुत्र
0: भारत पुत्र भरत कुमार पचे कह दिया मनोज कुमार
1: मनोज कुमार
0: ऐसी बात है
1: मन ने मनोज ने वालो
0: हाँ तो हमें यू करो नी मनोज कुमार जी तो कई बढ़िया सब की फिल्मों में है जो काम
1: होना तो पूरा गाना
0: हाँ ओ होना हो नहीं कैमरो फेरियोड़ो है
1: हाँ
0: और हकीकत में गीत बढ़िया लगे
1: बढ़िया लगे
0: हाँ बढ़िया लगे
1: लो लो बोलो हूँ

0: जिसको हकीकत में खोलू निप से और देखो अन्नदाता है किसान भाई है रात दिन मेहनत करे जिंद है क्या पूरे पड़े
1: हाँ।
0: हमें बड़े
1: बड़े नौला बाबा पन्ना लाल घोष भी आज जन्मदिन है आज दिन 1911 में जन्म लिया ए बंगाल प्रेसिडेंट उन टाइम बंगाल बंगला तो नहीं बांग्लादेश जो आज
0: है
1: वे जन्म लिया
0: बांसुरी बजाता कौन
1: हाँ बांसुरी बजाता संगीतकार भी है
0: आज बजे बंस लिया बड़ी मीठी
1: है
0: कृष्ण भगवान का ही बजाओ
1: उस्ताद अलाउद्दीन खान रो शिष्य आ रहा
0: हाँ हाँ भाई तुम्हारे कोई नहीं भूल सके और कह नहीं करियुड़ा कामा ने तो कह नहीं के भाई टाइम ही डिगा नहीं सके
1: सही है
0: तो आनी है जी को मंदिरा फूल चढ़ाओ कोटी कोटी नमन करा अरे हूँ तो भूल गो मनोज कुमार जी नहीं कोटी कोटी नमन करा और
1: आज दिन बड़े है केशुभाई पटेल ये भी आज दिन 1928 में जन्म लिया ये भारतीय राजनीति क्रिया
0: अरे कैश भाई अपन गुजरात मुख्यमंत्री
1: अच्छी करियो सही
0: तो हूँ मिली उड़ू एक गियो जी माड़ा पहरा ना
1: 1998-2001 तक गुजरात मुख्यमंत्री है
0: अरे हाँ भाई हूँ मिली उड़ो हूँ आऊ मिलन साल मिनक है तो आने है जी को कोटी कोटी बधाई है
1: हाँ बधाई है
0: और भगवान हजत हज रखे
1: बिल्कुल
0: अरे कह नहीं की देश प्रदेश की सेवा करता रहे
1: बड़े अजीम प्रेम जी यहाँ जनवरी 1945 में यो एक व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति रहे
0: हाँ है भाई अजीम प्रेम जी है
1: नी?
0: ये तो कह नहीं क्या भाई कोई कह नहीं कमजोर तबके लोग है बारे टाबरिया ने पढ़ाई वाजी कई संस्था चलावे और कई है आप लोग क्या भाई हिस्सो नहीं
1: भारत में शिक्षा पर केंद्र आधारित अजीम फाउंडेशन स्थापित करियो
0: टाबरिया ने बजी को मिले नहीं हो
1: हाँ, और यह तो है नी नवला भाई इतना परोपकारी है की अपने संपत्ति आधा हिस्सा दान कर दिया
0: आप क्यों को भाई देखो क्या तो देन जाओ पर क्या छोड़ जाओ
1: आप सोच बताई ना बार सोच बड़ा
0: अरे भाई आई हूँ को नहीं क्या तो क्या छाती मत कोई लेगो को नहीं
1: ना लेगो सर
0: क्या तो देन जाओ पर क्या छोड़ जाओ पर तो दे नहीं जाओ पर
1: बढ़िया है नहीं बच्चे देन जाओ काम आवे
0: अजीम प्रेम जी नहीं क्या दिन दिन है और आने है जी को भाई देखो
1: बधाई है
0: क्या कोटी कोटी लख लख बधाइया है और भारत भूमि माता ऐड़ा है जी को मिने जलमिया परोपकारी क्या सेवा करे
1: बड़े पंकज आडवाणी आज दिन 1985 में हुआ भारत का सबू महान बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी रहा
0: ठीक ठीक
1: भारत का एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें गोल्डन बॉय नाम के हुए
0: हसी बात है होने रखा है नहीं तुकमा लाउन नाला
1: हाँ गोल्डन बॉय
0: हाँ तो भगवान हजर तजर रखे है नी अच्छो का खेल खेलता रहे
1: हाँ।
0: बड़े
1: बड़े नजीस प्रतापगढ़ी आज दिन 1992 में जन्म हुआ उर्दू का प्रसिद्ध शायर रहा और कभी भी
0: ठीक ठीक भाई लिखा रहा गीत गजला लिखी तो आनी कोई नहीं भेज कह नहीं भूल सके ना नहीं कोटी कोटी बधाई है
1: एक गालिब सम्मान से सम्मानित है
0: हाँ कह मालिका नहीं हजर तजर रखे अरसों की रचना वाल लिखता रहे बड़े
1: बड़े कांतिलाल हस्तीमल संचेती ये भी आज दिन 1936 में जन्म हुआ ये भारतीय ऑर्थोपेडिक चिकित्सक रहा हड्डी डॉक्टर
0: ठीक है हड्डी डॉक्टर
1: हाँ और पहली बार देश में स्वदेशी घुटने का प्रत्यारोपण किया
0: गोडा दूजे लगे
1: हाँ और कई हारा विकलांग बच्चा जो है नहीं स्वास्थ्य वास्ते 500 ज्यादा शिविर आयोजित किया
0: करे भाई देखो कैंप लगा कह नहीं की भाई देखो भाग टूट हो जा तो माने हर दिन है पाचा पग माते खड़ा करे तो मोटी बात है आनी कोटी कोटी नमन है बड़े
1: बड़े सत्यपाल मलिक आज दिन 1946 में जन्म लिया ये भी राजनीति किया और बिहार उड़ीसा जम्मू कश्मीर गोवा और मेघालय राज्यपाल रह चुके
0: ओहो घना कह नहीं के भाई ओ हमारे ठोड़ ठोड़ मत
1: हाँ
0: हाँ तो देखो सौ का काम कर किया
1: हाँ।
0: तो आने कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है मंदिरा भूल चुनाव बड़े
1: बड़ा जी का फोर्थ यहाँ बात करा उत्तम कुमार जी आज दिन 1980 में फोर्थ हुआ है यहाँ पूरा नाम उत्तम कुमार चट्टोपाध्याय है भारतीय अभिनेता निर्देशक निर्माता पटकथा
0: ये फिल्मों में सिनेमा में काम करियो
1: हाँ करियो
0: तो को काम करियो तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है भूल बड़े
1: बड़े यशपाल आज दिन 2017 में फोर्थ हुआ ये मान वैज्ञानिक और शिक्षा विद दिया ये अपने खुदरी करियर की शुरुआत है नी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च करी
0: ये भाई बात समझ गया
1: वैज्ञानिक
0: बहुगुणी मिन खा तो छोका काम करिया तो आनी है जिको कोई नालो काम ही कोनी।
1: हाँ, यूजीसी रा अध्यक्ष भी रह चुका है।
0: हाँ।
1: और आप देखता होला दूरदर्शन में टर्निंग पॉइंट नाम रे कार्यक्रम आतो।
0: अरे भाई देखो कई चीज है करियोड़ा काम मन कोई नहीं भूल सके, कोटी कोटी नमन है और मन भूल सकता हूँ। बड़े
1: बड़े है अमला शंकर आज।

0: 2020 कोलकाता में फौत या ए आपने समय प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर या
1: ओ ठीक ठीक नाच गाना करता
0: हाँ नाचता और सिखाता भी
1: बात हाँ सी है तो अनि कोई भूलने वाली बात कोनी कोटी कोटी नमन है मंदिरेरा फूल चढ़ावा
0: भले उडपे रामचंद्र राव ए 24 जुलाई 2017 में फौत हुआ ए भारत रा अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो रा भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुका है
1: ओहो क्या अब मैं आप मशीन मिलना
0: अंतरिक्ष में आते हैं
1: ठीक तो भाई देखो गेड़ा बिरला मिनका कौन भूले भूली जी कौन ही
0: खासो योगदान
1: है है भाई तो देखो कोटी कोटी नमन है और मंदिरेरा फूल चढ़ावा
0: हाँ लबा
1: और मारो मंदिरो राजी करने वाले अग जी कोई एक आधो अर्जी सियो तो हुणो
0: हाँ नलबा हुणो

0: Wah, maar die had het hier ook niet uitgezien.
1: Hmm. Ah,
0: nou, kijk, het is een boboi, beloof hè. Door wat om haar kennen, je hebt ook badrija hen mee aan doego. Toch, kati out of jout, dat ik ook bij mannen kati gloeizumat.
1: Zeker, nou, ik
0: had ik had ik had ik ook zien pani per uur.
1: Bilkul, bilkul.
0: जाओ रिंद रोई रहा जिन्नावर है भाई पांदर पानी पी लियो है तो कोई कह नहीं के जिन्नावर कोई हेड हो गया तो उन्हें आगे रहो धाव डांडो है गोना बकरिया जल्डा कह नहीं के भाई टोगड़िया है नव नव ताल कूदे है तो बहु है जो हाउ से आनो जाओ और हमें देखो अगर मैं पाल तो कह नहीं के दो तीन महीना तो दौड़ हर होगी कल है जो दिन हो गया खेत और हमें है जो थाने करा दा बेलू।

0: तो बेलू तो मैंने कहो का मैंने सुनो तैयार करी है और जई थे थोड़ा दूर कह नी के कोई थोड़ा घो कह थारे की मन में रह जी को कर लो और हूं फेर दू माला
1: माला
0: माला फेरिया पचे जीते बेलू जी त्यान पचीम ले हो
1: रात
0: रात दत्ते ही करा ने मैं देखो अगर तारा ही खासा ऊंचा आएगा है
1: हाँ।
0: अंदाजी हो पड़गो है प्रोग्राम रो टाइम ही पूरो हो गो है तो भाई शेनो हमें लेवा ही राम राम
1: राम राम।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम सीमाड़ेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता

की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देशभर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा

उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारी सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्तापक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए।
श्री खरगे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले

0: पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: दिस इज आकाशवाणी। रिव्यू ऑफ टुडेज पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स रेड बाय साइड।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। श्रोता आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया है फिल्म पटियाला हाउस से। इस गीत को गाया है सफाकत अमानत अली ने, गीतकार है अन्विता दत्त और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और ये अगला गीत हमने लिया है फिल्म करीब से। ये दो गाना है रूप कुमार राठौड़ और संजीवनी के स्वर में। गीतकार है राहत इंदौरी और संगीतकार अनु मलिक।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये है

आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल से से। कलम है गुलजार की और धुन तैयार की है AR रहमान ने, गीत भी गाया है रहमान साहब ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों का आनंद आप और उठा सकते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम में, जो प्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर। अब लीजिए सुनिए अगला गीत, जो हमने लिया है फिल्म काइट से। गायन स्वर है के का, कलम है नासिर फराज की और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत का ये आखिरी नगमा सुने फिल्म दी सैटरडे नाइट से। इस गीत को गाया है अंकित तिवारी और देबोलीना बोस ने। इस गीत को लिखा है संदीप नाथ ने और संगीत से सवारा है अंकित तिवारी ने। फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा सकेंगे 9:30 से भी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय रात्रि की 8:45 होने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुने समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
4: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
2: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के

0: पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद

0: सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं, एक गीत हम मिली है फिल्म स्वीटी वेड्स एनआरआई से। इस गीत को गाया है पलश मुच्छल ने। गीत संगीत है पलश मुच्छल का।

श्रोता, ये गीत हमने लिया है फिल्म रनिंग शादी से। गायन स्वर है जुबिन नौटियाल का। गीत संगीत है किगन का।

श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब अगला कार्यक्रम मनचाहे गीत। श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम पूरी करता है आपकी फरमाइशें। आप सुनते हैं आपके पसंदीदा गीत। जो पत्र और मेल्स हमें आप लिखते हैं, उनके संदेश हम आप तक पहुंचाते हैं आपके नाम के साथ। आज मनचाहे गीत का सफर तय करेंगे आप मंजू लुंगड़ के संग। लीजिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म तू नहीं और सही से। गायन स्वर है मोहम्मद रफी का। गीत लिखा है असद भोपाली ने और संगीत से संवारा है रवि ने।

श्रोताओं, यह कार्यक्रम मनचाही गीत और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है अफसल ताज ने। ये मेल हमें मिला है कौन सिटी बरकावाला से। अफताब ताज, शाहीन, सोनू, तस्नीम, निपी और इनके साथियों ने। बुधराज कोरवाल का भी हमें संदेश मिला है उत्तम नगर दिल्ली से। इनके साथ लिखते हैं कमला रानी, यतिका कोरवाल और भानु प्रकाश। साथ ही सुनील पाठक का भी हमें मेल मिला है अनारकली बाज़ार जगराव पंजाब से। सुनील पाठक के साथ लिखा है कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और भाई सुचा सिंह पाठक, जयपाल यादव। इन सब की तरफ से भी हमें अगले गीत के लिए फरमाइश मिली है। धर्मेंद्र छिपा भोपालगढ़ राजस्थान से लिखते हैं। इनके साथ साथी हैं कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। इन सभी ने अपने गीत के लिए फरमाइश भेजी है। विश्वनाथ साहू हमें लिखते हैं लच्छरपुर छत्तीसगढ़ से। उनके साथ साथी हैं पंकज साहू और तिरुपति साहू। तो लीजिए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये अगला गीत। साथियों, गीत हमने लिया है लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है सिहरदीप की सुंदरी।

में फरमाइश भेजी है भाई मूसा शेख ने। ये भाई मूसा शेख हमें लिखते हैं सनावत से। इनके साथ हैं अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। मोहम्मद फरमान का हमें मेल मिलता है मुरादाबाद तुलापुर यूपी से। उनके साथी हैं मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। अनिल तमराकर भी हमें अपने अगले गीत के लिए फरमाइश भेजते हैं। ये हमें लिखते हैं शिवाजी चौक कटनी से। तो लीजिए सुनते हैं इन सब की पसंद का अगला गीत। गुलाब दास मानिकपुर का भी जस्ट हमें ये संदेश मिला है, तो ये हमें लिखते हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से। इनके साथ ही हैं राजा दास मणिपुरी और रानी मणिपुरी। सीताराम कांगड़ा भी हमें लिखते हैं, इनके साथ ही हैं बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। ये एकता कॉलोनी रोहतक से हमें संदेश भेजते हैं। सिद्धार्थ गोंडाने का हमें मैसेज मिला है, उनके साथ ही हैं अर्चना गोंडाने, प्रवण कुमार और हीरामण शेंडे। ऑक्सीजन पार्क नगर अमरावती महाराष्ट्र से हमें इनका संदेश मिलता है। भूषण खेड़ा भी हमें अपना संदेश देते हैं। पंजाब से हमें इनका संदेश मिला है। दिग्दर्शक गौर भी हमें अगला मेल मिला है मेरठ केट से। इनके साथी हैं कविता गोड़। तो लीजिए सुनते हैं इन सब की पसंद का ये अगला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म श्रवण कुमार से।

राधे श्याम शर्मा ने हमें अगले गीत के लिए फरमाइश लिखी है, गांव हांडीवाड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से। इनके साथी हैं राधे श्याम के इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। सुधाकर जाधव हमें लिखते हैं अपनी गीत की फरमाइश, ग्राम पंचायत कालीगांव से भेजते हैं। इनके साथी हैं सुधाकर देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित वायल और कुमार प्रथमेश देशमुख। साथी हैं सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। भूषण खेड़ा भी अपने गीत के लिए हमें फरमाइश भेजते हैं। भूषण खेड़ा की हमें फरमाइश मिलती है पंजाब फाजिलका से। साथ ही रविंद्र मोहन दास का भी हमें संदेश मिलता है, किशनगढ़ बिहार से लिखते हैं। इनके साथी हैं आशा देवी। अगली फरमाइश हमें मिलती है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश की। ये सभी हमें लिखते हैं पार्थ रेडियो क्लब से। मुकेश कश्यप की अगली फरमाइश है, इनके साथी हैं शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। सदानंद मंदूरकर की अगला संदेश मिलता है, इनके साथ ही इस फरमाइश भी हमें लिखी है सुशीला देवी ने और कुमार गौरव मंदूरकर। ये हमें लिखते हैं डाबकी रोड अकोला से। तो लीजिए सुनते हैं इन सब की पसंद का ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये है कार्यक्रम मनचा है गीत। लीजिए सुनते हैं कुछ फरमाइशें और कुछ संदेश और जो हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजे हैं। जॉन डिकास्टो, रोजी डिकास्टो, पर्ल डिकास्टो और विलेंस डिकास्टो, ये सभी हमें अपने अगले गीत के लिए फरमाइश लिखते हैं जनकपुरी सदारनपुर से। अनिल बुरांडे भी हमें अगले गीत के लिए फरमाइश लिखते हैं बालर शाह से। जाकिर मुलानी हमें फरमाइश लिखते हैं, इनके साथी हैं सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर और इनके चाचा चाची, साथ ही उनका पूरा मुलानी परिवार भी हमें इस अगले गीत के लिए फरमाइश लिखता है। अगले गीत के लिए हमें एक और संदेश प्राप्त हुआ है। ये संदेश हमें मिला है नामदेव से, तो सहारनपुर से हमें लिखते हैं राधा नामदेव और अभिषेक और हर्षित भी। ओम कुमार का अगला हमें संदेश मिलता है मोताला महाराष्ट्र से, इनके साथी हैं विजय सुरलकर, रतनमाला और कुमकुम आराध्या। साथ ही इसी गीत के लिए फरमाइश और मिलती है हमें एमडी पत्रोड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से, ये हमें लिखते हैं, इनके साथी के नाम भी इन्होंने अपने संदेश में लिखे हैं, वो है मंगल जनाथन, रोशनी जनाथन, अंकुर जनाथन, इंदु और डॉक्टर सुनील जनाशन। विजय सुरलकर का हमें अगला संदेश मिलता है मोताला महाराष्ट्र से, इनके साथी हैं रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सोलंकर। राम शरण हमें अगले गीत के लिए लिखते हैं, इनके साथ में लिखा है साहिल विश्वकर्मा ने, मंजू रंजना वंदना प्रियन और दिव्यांशी विश्वकर्मा भी। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से हमें इनकी फरमाइश मिलती है। साथ ही हैं दीपक वर्मा, ये अपने गीत के लिए फरमाइश लिखते हैं ग्राम पीपरलोड झारखंड छत्तीसगढ़ से, इन सब का हमें संदेश मिलता है। साथ हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, कवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोल मध्य प्रदेश से, ये सभी अपने साथियों के साथ कार्यक्रम मनचाही गीत में अपनी फरमाइश भेजते हैं। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप भी हमें मोहली चंडीगढ़ से अगले गीत के लिए फरमाइश लिखते हैं। सुभाष गोदारा ने फजल का पंजाब से हमें अपने गीत के लिए फरमाइश लिखी है, इनके साथी हैं विमला गोदारा, इंदु।

और हिमांशु। राजपाल शर्मा ने हमें इस अगले गीत के लिए लिखा है, आदर्श नगर मलोड पंजाब से। इनके साथ ही हैं योगेश, निवान, सौरभ और मांडे शर्मा। लीजिए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये अगला गीत। श्रोता, गीत हमने लिया है फिल्म मुगले आजम से।

श्रोताओं, यह है कार्यक्रम मन चाहे गीत और मैं हूँ आपकी आज की हम सफर मंजू लुंकड़। तो लीजिए सुनते हैं अगले गीत के लिए हमें संदेश कौन भेजता है। ये संदेश हमें मिला है टाउनशिप सेक्टर 8 मलाई नगर से अशोक श्याम कंवर, प्रमिला श्याम कुमार, श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर का। साथ ही अगला बड़ा सा संदेश हमें मिलता है जेल रोड से शिमला से हमें ये अगला संदेश मिला है। ये हमें लिखते हैं संदीप, राधिका और मन्नत कौर। काफ़ी बड़ा संदेश हमें ये लिखते हैं और इनके कई साथियों के नाम हमें मिले हैं। लीजिए सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। इनके साथी हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। इन सब ने भी अपने संदेश में हमें

गीत के लिए फरमाइश लिखी है। कृष्णा पार्क दिल्ली से लिखते हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सोटी सिटी दीवाना। कुछ ही पलों में हम सुनेंगे इन सब की पसंद का अगला गीत। रूपेश संगाई हमें लिखते हैं महाराष्ट्र से। इनके साथ जो संदेश में जिन साथियों ने भाग लिया है वो हैं महेश संगाई, प्रगेश संगाई, प्रितेश और समस्त संगाई परिवार। तो लीजिए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद का ये अगला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म मियां बीवी राजी से।

श्रोताओं, यह कार्यक्रम मनचाहे गीत और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। तो लीजिए सुनते हैं अगला संदेश, हमें किसका मिलता है। ये संदेश हमें मिला है मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा का। ये हमें लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। साथ ही हमें एक और संदेश मिला है जिसे हमने प्राप्त किया है मोहली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, इन सब की पसंद का हम जल्द ही अगला गीत सुनेंगे। उससे पहले कुछ और नाम, यासीन अनजान का हमें दादा बाबू रोड गिरिजोड़ झारखंड से अगला संदेश मिलता है। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफा नवाज़ और बेबी चाहत और साथी है सादिया। तो लीजिए एक और संदेश हमें मिला है

अनिल कपूर खावनकर का, ये हमें लिखते हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश, श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि इनके साथ। और संदेश में मिले हैं बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत लाडला टुक टुक। इनके और साथी हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता और प्रिंस एकांश, मेहरनगर उत्तरखेड़ महाराष्ट्र से ये हमें लिखते हैं। जल्दी ही हम सुनेंगे इन सबकी पसंद का अगला गीत। उससे पहले हमें एक और संदेश प्राप्त हुआ है, ये फरमाइश हमें भेजी है राजेश वर्मा ने। राजेश वर्मा लिखते हैं हमें भंजन यूपी से।

राजेश वर्मा लिखते हैं हमें भंजन यूपी से, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमें एक और संदेश मिला है, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू का। इनका संदेश सुनाने से पहले लीजिए सुनते हैं कुछ और नाम हम बता दें जो हमें अभी अभी मिले हैं। ये संदेश हमें मिला है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से। इस संदेश में जो हमें नाम प्राप्त हुए हैं वो हैं मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरह जहानाज, अत जहानाज नुजत, साजिया शाहीन और नाजिया। जल्द ही हम आप सभी को आपके पसंद का गीत सुनाएंगे, उससे पहले एक आखिरी संदेश और ले लेते हैं। ये है SM जावेद और इनके साथ है शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से। लीजिए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये अगला गीत।

श्रोता, ये गीत हमने लिया है फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से। इस गीत को गाया है मुकेश ने। शमीम जयपुरी का लिखा गीत और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: स्वामी संजय ढींगिया भी हमें अपना संदेश भेजते हैं बागकत यूपी से। इनके साथी हैं नमन और अपार ढींगिया। हिमानी वर्मा का अगला संदेश है। हिमानी जी हमें लिखते हैं, हिरमणि जी क्षमा कीजिए, हिरमणि जी शर्मा हमें लिखते हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। इनके साथी हैं पारसमणि, पुष्पेंद्र और नौखेलाल वर्मा। सत्येंद्र जी का हमें अगला संदेश मिला है जालौन उत्तर प्रदेश से। इनके साथी हैं आदर्श सार्थक आलोकिक। इन सभी के पसंद का जल्दी ही हम अगला गीत सुनाएंगे। उससे पहले कुछ और संदेश हम आपको बता दें साथियों। बुलडाणा बड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभालाई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार हमें लिखते हैं। बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार का भी हमें संदेश मिला है। अगला संदेश हमें मिलता है अकरम हुसैन प्रिंस का। इनके साथी हैं बेगम इशरत अकरम, वसीम, रुबीना, आरज। ओम प्रकाश राय का हमें संदेश है जो हमें प्राप्त हुआ है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। इनके साथी हैं उष्मा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया, प्रतीक, रोशनी राय और प्रांजल राय। सुरेश खुराना का भी हमें ये संदेश मिला है MLB रोड ग्वालियर से। इनके साथ ही जो संदेश में जिनका नाम शामिल है वो है किरण खुराना, लव्या और SK पप्पी। अगला संदेश है सरफुद्दीन अंसारी का। कई नाम इन्होंने अपने संदेश में हमें लिखे हैं, वो है बक्सर बिहार से। ये हमें लिखते हैं फातिमा खातून अंसारी, सुरीत, रमेश साहू, डमूराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, सोनम अदिबा और दानिश अंसारी। कोला बाजार बक्सर से हमें लिखते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभिनानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से हमें ये संदेश मिलता है राज SD अंसारी और आसमा खातून अंसारी का। तो लीजिए सुनते हैं सबकी पसंद का ये अगला गीत। ये अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार हैं प्रेम धवन और संगीतकार चित्रगुप्त। फिल्म का नाम चांद मेरे आजा।
1: जरा देखो ओ गोरी मुड़ के, हम भी तो खड़े हैं रास्ते में। हाय रे जरा देखो ओ गोरी मुड़।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल और कुछ और संदेश हमें मिले हैं। उसमें से ये पहला संदेश जो मैं बोलूँगी वो है कीर्तनपुरी गोस्वामी का। कीर्तनपुरी जी हमें लिखते हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। इनके साथ ही हैं लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।

श्रोताओं, ये है कार्यक्रम मनचाहे गीत। आपके पसंद के गीत हमें जो प्राप्त होते हैं ईमेल्स और पत्रों के द्वारा, हम वही संदेश आपको सुनाते हैं आपके नाम और पते के संग। तो लीजिए सुनते हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है बाबू भाई ने। जवाहर नगर उदयपुर से हमें लिखते हैं और उनके साथ इसी गीत के लिए फरमाइश की है भारती देवी ने। मोहम्मद वकार का भी हमें अगला संदेश मिलता है। मोहम्मद वकार का संदेश हमें प्राप्त हुआ है, उनके साथी हैं मोहम्मद इकबाल फिरोदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोज़ी, बिडू, साजदा और हीना कौसर। ये हमें फरमाइश भेजते हैं मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से। मोहम्मद वकार का संदेश हमने सुना। राजेंद्र कुमार का अगला संदेश हमें मिलता है, इनके साथ ही हमें अगले गीत के लिए फरमाइश भेजते हैं। साथ ही अगला संदेश हमें मिला है नेहल टाक का। लाल सागर जोधपुर राजस्थान से नेहल टाक का हमें संदेश मिलता है, इनके साथ इनके साथी हैं यश और नील। पूनम गगनेजा का हमें अगला संदेश मिलता है। पूनम जी हमें लिखती हैं जलाला बेस्ट, सुरेश गनेजा, पूनम गनेजा और विशाल प्रिया दिशानी और नमित इनके साथी भी इस अगले गीत के लिए फरमाइश भेजते हैं। आफताब अंसारी ने अगले गीत के लिए फरमाइश भेजी है, शेरवानी स्कूल गुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमें लिखते हैं। इनके साथी हैं रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनफर मास्टर, लुपना अंसारी और आलिया अंसारी। लीजिए सुनते हैं इन सब की पसंद का ये अगला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे से।

दुनिया में उस जैसा कोई नहीं, उसकी अदाएं सबसे जुदा है, उसकी झलक

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंचा है गीत, और अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है मोहसिन हाशमी ने। नई बस्ती गुंडरवारा से हमें लिखते हैं, इनके साथी हैं नाजमा बेगम हाशमी और तौसीफ हाशमी, साथ ही तैमूर हाशमी भी हमें लिखते हैं, मसरूर हसन। इनका संदेश हमें मिलता है सहारनपुर से। इनके साथी हैं सैयद मसरूर साइना।

0: हसन नाजिया इब्राहिम। अगला संदेश हमें मिलता है सीताराम कांगड़ा का। सीताराम कांगड़ा जी हमें लिखते हैं एकता कॉलोनी रोहतक से। इनके साथी हैं बबीता निखिल और तन्वी कोट। लीजिए सुनते हैं सबकी पसंद का ये अगला गीत। श्रोताओं, गीत हमने लिया फिल्म हम हिंदुस्तानी से।
1: बाल मारे हो

0: फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम जिसमें हम श्रोताओं के ईमेल और पत्र पढ़ते हैं, कार्यक्रम मन चाहे गीत अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय

0: मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझो में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The union

ही संपन्न होती है। कल सवेरे 5:53 पर पहली सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।